फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मेरी बेस्टी के थेरेपिस्ट के हिसाब से मेन आर बॉर्न इनसेंसिटिव, और मैंने अपनी बेस्टी के साथ 100 बार लड़ाई की है कि ऐसा ट्रू नहीं है, ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट है. आदमी नहीं होते तो हम औरतें अपने आप को एंटरटेन कैसे करती. लेकिन आई एम बिगिनिंग टू थिंक दैट जो उसकी थेरेपिस्ट ने कहा है शायद दैट माइट बी ट्रू. सो आई हैव दिस रियली गुड फ्रेंड, ओके. ये बंदा और मैं पिछले 20 साल से दोस्त हैं, और बीच में इसे मुझसे मोहब्बत भी हो गई थी, माइंड यू. और अब मैंने इस सिंगल लुखे बंदे को अपनी एक दूसरी दोस्त से मिलाया हु इज़ ऑल्सो एन ऑफिस कॉलीग. तो अभी ऑफिस कॉलीग और मैं दोनों बातें कर रहे हैं, एंड आई वाज लाइक यार अपने बंदे को फ़ोन कर, मेरे को उससे एक बात करनी है, कुछ पूछना है. तो उसने फ़ोन किया, उसे बंदा उससे बड़ी स्वीटली बात कर रहा है कि बेब इनका नया नया रिलेशनशिप चल रहा है. सो द गाय सेइंग बेब कैसी है, तूने खाना खा लिया है मैं. और फिर शी सेड कि हाँ तुझसे रोशी बात करेगी. तो उसने मुझे फ़ोन दिया लाउड स्पीकर पे, और बंदा मुझे कह रहा है हाँ भाई मोटी क्या हाल है. आई वाज लाइक हाँ भाई मोटी, हमने तो एक दूसरे से कभी ऐसे 20 साल में बात नहीं की. हम तो इंटेलिजेंट हैं, हम तो स्कूल गए थे, हम तो संस्कारी बालक हैं, हम एक दूसरे से तमीज़ से बात करते हैं. मैं हाँ भाई मोटी कैसे बन गई. देन आई रियलाइज्ड मेरे

0: Milci.
1: Isca bana, usca bana, saca bana. Rabana. Burga, burga. La vid bala burga. Milci, burga.
2: Hello,
3: Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं
3: सर? मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको, मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: सर कुछ गा के सुनाएगा?
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर. वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको
3: भेज. वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
2: एनाकोंडा में कौन से गाने
3: हैं सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया एनाकोंडा में, यही बात है मेरे लिए. एक पेशकश कर रहा हूँ. ताने डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया.
2: मैं पागल है क्या?
3: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा.
2: सुन ले बात
3: सर.
2: और बंद करिए, बिन में जो बजा रहा है ये बंद कर रहा
3: सर. बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर.
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका.

0: Lead के साथ only on मिर्ची It's hot
1: Yep again
2: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति 7323578200 जय गुरुदेव
3: ओह नो
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप 1213 न्यू जर्सी 27 सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप 700 हैरिस एव मिडिलसेक्स इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर यू आर इन गुड हैंड्स बैटिंग तो काफी सारे करते हैं विराट एक ही होता है
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं पर बच्चन एक ही होता है
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है
7: एक ही होता है
4: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ये जो अपनी बहन से टैडी बियर चुरा कर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया एंड सेड दिस इज योर बर्थडे प्रेजेंट माय डार्लिंग, उसे पता चल गया ना, उसके बाद जो छित्तर पड़ेंगे उसका क्या करने वाले हो आप? मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB विद योर कन्फेशन एंड आई बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरे साथ लाइन पर अभी है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
2: हाय मोशी,
1: आप बहुत शाय फील कर रहे हो ना?
2: यार यू गेट,
1: आप शाय मत फील करो, ठीक है? एक तो किसी को आपका नाम नहीं पता है, दूसरा आई एम नॉट इवन गोइंग टू आस्क यू टू मेनी क्वेश्चंस बिकॉज ये नॉन जजमेंटल जोन है, बट आपने मुझे जो स्टोरी सुनाई थी इंस्टाग्राम पर इंस्पायर्ड बाय द वीडियो दैट यू सॉ, वो स्टोरी एक बार फिर से सुना दो.
2: Yeah, it was like quite long back, around more than 12-13 years, काफी लेट नाइट था. I was just coming back from a friend's place and at the time there was no transport available, so I was just walking down the road and they stopped by a corner shop to get a smoke for me and suddenly this big car comes in and just stands beside you and driver pops up and the driver was asking me to just guide to some address which was close by nearby. And that time there was not all these Google Maps and all, it were not there. But now he was insisting me to hop onto the car, and the lady who was sitting at the back seat, she was like all decked up and everything, and dekhke pata lag raha tha ki kafi high society type lady hai. And she started insisting, nahi aap saath mein aake thoda dikha do address kahan pe hai. Bolo bhai सामने तो मैडम सामने है, ये इधर पास में, अब चले जाओ ये. Then she is like, you know, if you come down, or my driver will drop you back home. Then she started offering, like, we can have a drink together. And based on that, तब मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा. बोल भाई तो गड़बड़ है भाई, रात के मतलब 12:30-1 बज रहे हैं, वैसे कोई अनजान कोई लेडी जैसे asking you to show up an address and then offering drinks and all. कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है. निकलने की कोशिश कर रहे हैं somehow मैनेज करके, बट then she straight away like came up to the near the window and straight away offered out like, if you come down, they're going to spend the night with me. I can, so many different things she started saying, and they actually offered money as well, that you can some earn some quick bucks as well.
1: तो ये अगर 12 साल पहले की कहानी है और ये अनजान हाई सोसाइटी लेडी अपनी गाड़ी में आपको ये प्रोपोजिशन कर रही थी, कितने पैसे दे रही थी आपको रात के?
2: था कुछ अराउंड 7-8,000.
1: वो आपका मन नहीं कर रहा एक सेकंड के लिए?
2: तो मतलब समवन ऑफ लाइक दैट एज जस्ट स्टार्टेड अर्निंग इनटू द जॉब, 7-8 grand वाज लाइक गुड अमाउंट. मेरे भाई निकलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है. वहाँ से निकला, बाद में फ्रेंड्स को बोला कि भाई देख ऐसे ऐसा हुआ है. तो देन कपल ऑफ माय फ्रेंड्स भी कह रहे, यू मिस दैट अपॉर्चुनिटी मैन, सो मेनी थिंग्स यू कुड हैव एंजॉयड दैट यू अर्न मनी. एंड देन यू लेटर ऑन केम टू नो दैट दैट पर्टिकुलर स्पॉट इज लाइक फेमस फॉर लाइक नाइट पिकअप पॉइंट्स एंड दिस प्रोफेशनल जिगलर्स एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम एनी अवार्ड.
1: तो आप नाइट पिकअप स्पॉट फॉर जिगलोज पर पहुंच गए, सडनली एक रात में आपकी किस्मत बदल जाती, बट यू डिसाइडेड नहीं, मैं अपना जिस्म नहीं बेचूंगा, मैं सिर्फ प्यार में भरोसा करता हूँ. इज दैट राइट?
2: आई एम टू जेंटलमैन टू बी गोइंग इनटू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग.
1: ओह माय जेंटलमैन, आई हैव समथिंग फॉर यू.
3: यू हैव बीन रोशिफाइड.
1: अब क्योंकि मुझे आपने अपनी ये स्टोरी सुनाई एंड इट्स सच एन अडोर्ब स्टोरी, बट आई होप आपका बाद में मन नहीं डोला एंड यू डिडंट लाइक अटेम्प्टेड और एनीथिंग. बट व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी मिस्ट्री कॉलर. और अगर आपके पास भी मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह ऐसी ही इनक्रेडिबल स्टोरी है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड आई विल रोशिफाई यू एज वेल. नाम छे मिर्ची रोशी, काम छे आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: या यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज.

0: सारा मेरा। उप्स।
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
2: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
3: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियो स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इसलिन।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
2: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
3: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
2: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
3: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
2: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
3: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आई नीड टू टेल यू दिस ओके एंड आई होप कि मैं जिस बंदे के बारे में बात कर रही हूँ वो ये स्टेशन राइट नाउ सुन रहा हो. आई मेट दिस गाय ऑन अ डेटिंग ऐप, ठीक है, और बंदा मुझे काफ़ी क्यूट लगा. हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे एक पूरा दिन, हमने पूरे दिन ऐसे चैटिंग्स करी. अगले दिन मैंने ऐसी, मतलब क्योंकि मैं अपने फ़ोन पर व्हाट्सएप डीपी ऑलमोस्ट एवरी डे आई चेंज इट व्हाटएप्स, तो इस बंदे का मुझे सुबह सुबह मैसेज आया भाई कि ये जो डीपी है ना तुम्हें सूट नहीं करती है, तुम्हारे पास इससे कोई बेटर डीपी नहीं है. एंड आई वाज लाइक एक सेकंड भाई साहब, आपको मुझसे मिले मात्र 24 घंटे हुए हैं और आपको ये लग रहा है कि आपका अनसोलिसिटेड एडवाइस मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, वो भी सुबह के 7 बजे. NO, I just went ahead and blocked this guy. Moral of the story ये है that अगर आप किसी को एक dating app पर या जिंदगी में कभी मिलते हो ना, जब तक वो आपसे advice ना मांगे please ना दे, क्योंकि opinions are like noses, everyone has them. अपना नाक अपने बिजनेस में रखें, दूसरों के बिजनेस में नहीं. अब आप मुझे बताओ कि लास्ट टाइम आप जब किसी डेटिंग ऐप पर थे, व्हाट वाज द ब्लूपर यू एनकाउंटर्ड, और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: सुबह का ब्लॉक हुआ अगर शाम को अनब्लॉक हो जाए तो उसे ब्रेकअप नहीं कहते, उसे मोहब्बत का इंटरवल कहते हैं। और आप तो सबसे ज्यादा डील कर रहे हो इसके साथ, गेटिंग ब्लॉक्ड टाइम एंड अगेन, लेकिन ना सुनने की आपको आदत नहीं है। देन यू सेंड मी अ मैसेज थिंग, वो समझ क्यों नहीं रही है कि मैं उसका प्रिंस चार्मिंग हूँ, व्हाई इज शी सो ब्लाइंड एंड सो डेफ। अगर आप भी ऐसे कंफ्यूज हो ना कि बार बार ब्लॉक क्यों हो जाते हो, देन आई थिंक वी शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट, ताकि मैं आपको कंसेंट और नो के बीच का अंतर सिखा सकूँ, ठीक है। और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE। सो हिट मी अप बेबी, लेट्स टॉक अबाउट लव, रिलेशनशिप्स एंड ऑल थिंग्स टॉक्सिक एंड नॉन टॉक्सिक। एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, usko wahan se mat uthao, yaar. Hello.
2: हेलो
3: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब इसको वहां से मत उठाओ यार ऐसे नहीं उठाएगा यार टूट जाएगा सारा सामान टूट जाएगा वहां से मत करो उसको वहां से हेलो हेलो भाई साहब
2: हाँ जी बोलो
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन
2: हाँ जी देते
3: एक सेकंड होल्ड करना उसको वहां से मत उठाया मैं तेरे से बोल रहा हूँ दो टुकड़े हो जाएंगे सारे मत उठा नहीं उठेगा तेरे से सामान भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ ये मशीनें बंद कर दे मशीनें बंद कर दे सारी मशीन बंद कर दे शायद सारी बंद कर दे ये गिर गया है और इसको उठाना है यार ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है कितना सामान उठाते
2: हैं जी उठवा लेंगे उतना ही हम
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को हाँ ये आप ये भेज दो ये इसको उठवा दो यार ये तो गिरा पड़ा यार ये इसकी वजह से सारी परेशान है
2: किसको जी
3: सेंसेक्स गिर गया है इसको उठवा दो आप
2: क्या गिर गया
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो सेन नीचे रह जाए तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी
2: भाई साहब क्या उठवाना है आपको
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको
2: सामान
3: उठवा
2: क्या मजाक कर रहा है
3: तो मार्केट गिर गया यार मार्केट गिर गया उसमें सारे सारे परेशान है यार आप उठवा नहीं सकते तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ सेंसेक्स गिर गया यार
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो सेंसेक्स उठवा दो यार कब से गिरा पड़ा है हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और फोन मत काटिएगा मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते मार्केट की बात कर रहा था क्रेन किराए पे देते हैं आपका मुर्गा बन गया है रेडियो मिर्ची पे हैं हेलो
2: कहाँ से बोल रहे
4: हैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है
6: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग ईकेजी एंड फ्लेबोटमी मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स
5: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu
7: तेरा क्या होगा कालिया
8: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
7: अब मिर्ची खा
9: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: inefficient,
1: very complex,
2: clumsy और
3: confusion ही confusion.
0: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर कभी मैं जिंदगी में भगवान के साथ एक कॉफी डेट पर हूँ ना और वो मुझसे फीडबैक मांगे ह्यूमैनिटी के बारे में, आई वुड टेल हिम कि जब आदमियों को, स्पेशली द इनसेंसिटिव वंस को आप इस धरती पर भेजते हैं तो कृपया करके उन पर एक मार्क लगा दे, जैसे सर पर एक मोटा सा तिल या एक तीसरी आंख बिल्कुल चीक के बीच में, ताकि औरतों को समझ में आ जाए कि ये बंदा इनसेंसिटिव है और इसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है. फॉर इंस्टेंस, आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई रियली गुड फ्रेंड्स और मेरी मम्मी की तबियत आजकल ठीक नहीं है, वो ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट्स रॉन्ग विद हर एंड स्टफ. तो मैं बहुत परेशान हो रही थी एंड आई थिंक आई गॉट वेरी इमोशनल. तो मैं इमोशनल हो रही हूँ कि डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा मम्मी को क्या हुआ, ये वो. मुझे कह रहा है बंदा, आर यू श्योर तू PMS नहीं कर रही है? एंड आई वॉज लाइक, अभी पता है एक चीज है दैट आई एम श्योर ऑफ, कि अगर मेरे हाथ में एक चाकू होता तो तेरी नस में स्लो मोशन में काटती. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दैट इफ यू आर एन इनसेंसिटिव पर्सन, अपने ओपिनियन को ना थोड़ी देर के लिए दबा कर रखना, स्पेशली अगर अ वुमन इज शेयरिंग वेरी डीप फीलिंग्स विद यू, क्योंकि हम तुम्हें ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए तुम्हें बताते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है. और जब तुम ऐसे बकवास करते हो ना, हमारा मन करता है सारी ह्यूमैनिटी में से मेल्स माइनस हो जाएं. अगर आपको भी अपने बेस्ट फ्रेंड पर बहुत गुस्सा आ रहा है, why don't you hit me up? We will compare notes. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: इस दुनिया में जहाँ पर when you break up with somebody or someone breaks up with you, आप दो तीन चार महीनों के बाद move on कर जाते हो because you realize कि यार अब इस बंदे का इंतजार करके क्या ही होगा, this person's not coming back. लेकिन one of my closest friends has in the last one year patiently waited for her ex-boyfriend to come back to her. इन दोनों का काफ़ी misunderstandings की वजह से झगड़ा हुआ and a lot of people were involved in creating the misunderstandings. मेरी बेस्टी ने बहुत कोशिश की उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की, लेकिन उस टाइम वो बंदा इसके बारे में सुनने को तैयार नहीं था. आज उस बात को ऑलमोस्ट एक साल हो गया है. बीच बीच में ये दोनों बात करते हैं. दे आर नॉट वेरी श्योर इफ दे आर रिलेशनशिप रेडी और नॉट. लेकिन इस बंदी ने पिछले एक साल में किसी और बंदे को ना डेट किया, ना कॉफ़ी के लिए गई, ना किसी बंदे से फ्लर्टेशियसली बात की. और जब इससे पूछो तो ये ओल्ड फैशन लेडीज की तरह कहती है कि अगर मेरे मन मंदिर में वो इंसान है तो मैं किसी और से बात कैसे कर लूँ. मुझे तो अब भी ऐसा लगता है लाइक आई एम बिट्रेइंग हिम अगर मैं किसी और को उस प्यार की नज़र से देख लूँ. इन 2026 टू फाइंड लव लाइक दैट इज नॉट जस्ट हार्ड, इट्स बॉर्डर लाइन इम्पॉसिबल. लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग यू हैव फॉलन इन लव लाइक दिस वंस इन योर लाइफ. और अगर ये आपके लिए सच है देन वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर एंड टेल मी योर लव स्टोरी. वो आज की हो, 12 साल पहले की हो, 10 साल पहले की हो, इट डजेंट रियली मैटर. मैं आपके लव स्टोरी का इंतजार कर रही हूँ. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है RocHIE. फाइंड मी ऑन योर सोशल मीडिया एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्यों.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La virtua la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello,
3: Mr. Gotham. Sir, मैं actually आज सर request करना चाहता हूँ. मैं तो आज सुना है वो singing, winging सिखाते हैं सर. तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े different होते हैं.
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था तो स्नेक का ही घुस गया था. तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ. सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गा के
3: सुना. हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ.
3: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
2: सुन ले बात पहले. सुन पहले बात.
3: हाँ सर.
2: और ऐसा बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा है.
3: सर बोलिए.
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर.
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: जुनैद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

सच्चा प्यार जरूरत बेस्ड नहीं होता, सच्चा प्यार चॉइस बेस्ड होता है। आपके पास जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप किसे चूज करते हो वो बताता है कि आप किससे कितनी मोहब्बत करते हो। ये एक छोटा सा डायलॉग था फ्रॉम द फिल्म एम्स्टरडैम, जिसमें वो नर्स अपने पेशेंट को समझा रही है दैट ट्रू लव डज नॉट डिपेंड ऑन नीड, इट डिपेंड्स ऑन चॉइस। तो वो बंदा उससे पूछता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिस इंसान को चूज कर रहे हैं हमें उसकी जरूरत भी है? शी सेज नहीं, जरूरत है वो अलग बात है, लेकिन हर बार, हर मुश्किल के दौरान, हर डिफिकल्ट टाइम के थ्रू तुम उस इंसान को बार बार ओवर एंड ओवर अगेन चूज कर रहे हो, एंड दैट इज द साइन ऑफ ट्रू लव। अब आप मुझे ये बताओ, अपनी आंखें बंद करके, हु इज दैट पर्सन हु कम्स टू योर माइंड व्हेन आई टॉक अबाउट चूजिंग समवन फॉर योरसेल्फ? और वो जो भी इंसान है उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं हूँ मैं आपकी ब्रोशी, आई रियली मीन दैट जॉब प्रोफाइल। तो फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम या फेसबुक, लेट्स गेट

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Hello, usko wahan se mat uthao yaar. Hello.
3: हेलो
4: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
3: हाँ जी बोलो।
4: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
3: हाँ जी देते।
4: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
3: कहाँ भिजवाना है
4: मैं आपको बता दो। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
3: है? जी उठवा लेंगे उतना ही हम।
4: नहीं नहीं, वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
3: किसको जी?
4: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
3: क्या गिर गया?
4: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
3: भाई साहब क्या उठवाना है?
4: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
3: सामान
4: उठवा। तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
3: उठवाना है।
4: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा। हेलो
5: हेलो
3: हेलो
5: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो,
3: कहाँ से बोल रहे हैं?
5: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। तेरी मम्मी की

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
2: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

नरगिस जी बस 6-7 साल की थी जब उन्होंने मिड 30s में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं, ये वो सैड स्टोरी नहीं है कि फैमिली ने फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से छोटी सी बच्ची से फिल्मों में काम करवाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट नरगिस जी की फैमिली, जिसमें मेनली उनकी मम्मा थी, दे वर क्वाइट वेल टू डू। उनकी मदर जद्दन बाई जी एक क्लासिकल सिंगर थी और एक म्यूजिक कंपोजर भी। तो इस तरह के इंडिपेंडेंट कला से भरे माहौल में नरगिस जी पली बड़ी। उनको फिल्म ऑफर्स भी आने शुरू हो गए। उन्होंने कुछ 6-7 फिल्मों में एज चाइल्ड एक्टर काम किया होगा, जिसमें कहीं उन्हें बेबी नरगिस, कहीं बेबी रानी नाम से क्रेडिट दिया गया। इनफैक्ट उनकी फर्स्ट फिल्म एज लीड एक्ट्रेस भी उन्होंने तब की व्हेन शी वाज जस्ट 14। 1943 में ये फिल्म आई थी तकदीर, जिसमें उनके एक्टर थे मोतीलाल जी। काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, आप कभी देखना। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सुंदर सा गाना सुनेंगे, पिक्चराइज्ड ऑन नरगिस जी, आवारा फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो मिस्टर गौतम,
4: कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
4: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन के सर नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
4: हाँ, सर कुछ गाके सुनाई?
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? है ना कोंडा फिल्म देखी है?
4: एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो।
3: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
4: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश करूँ? तन डोले मेरा, मन डोले मेरे, गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
4: सुन ले बात मेरी,
3: मेरी बात
4: हाँ, सुन पहले बात सुन।
3: हाँ सर,
4: और जब बंद करिए बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है सर, बोलिए।
4: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात? एक
3: जी सर,
4: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या, किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: लेट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट इट्स पटाक।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
4: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

40s और 50s में नरगिस जी ने ये जो सारे सोफिस्टिकेटेड स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन वाले किरदार निभाए हैं ना, इन्होंने काफी नेचुरली निभा लिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, जिसकी एक वजह शायद ये भी थी कि वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही थी, बोल्ड, फेयरलेस, फाइस्टी। वो अपने जितनी भी मीटिंग्स होती थी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के साथ वो खुद करती थी, अपने करियर के डिसीजंस वो खुद लेती थी, उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। कोई ऐसा फैमिली मेंबर नहीं था जो उनके करियर को कंट्रोल करने की कोशिश करता था, और इसका क्रेडिट जाता है नरगिस जी की मदर जद्दन बाई जी को, जो खुद एक इंडिपेंडेंट वुमन थी, और उसी तरह की परवरिश उन्होंने नरगिस जी को भी दी। आपको पता है नरगिस जी एक बहुत ही बढ़िया स्विमर थी, इनफैक्ट वो उन पहली मेनस्ट्रीम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से एक थी जिन्होंने स्क्रीन पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना 1951 की आवारा फिल्म में। उन्हें क्रिकेट खेलने का भी बहुत शौक था, अच्छा साड़ियां पहनने का भी बहुत शौक था, वो भी लाइट कलर की साड़ियां। ज्यादातर लड़कियों को एक और जो शौक होता है रोड साइड पे गोलगप्पे खाने का, वो भी उनको था। वैसे तो नरगिस जी की बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंसेज रही हैं कई फिल्मों में, लेकिन अगर आपने चोरी चोरी फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी ना, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। फिलहाल उसी फिल्म का एक गाना यहाँ पर हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: एक अच्छी खासी हंसती खेलती गाती सही जिंदगी को तबाह करने में क्या लगता। लेकिन धीरे धीरे वो ही इस कमिटमेंट से कतराने लग गए। इधर नरगिस जी काफी सीरियस हो गई। ऐसा भी सुनने में आता है कि वो वकीलों से मिली, मिनिस्टर्स तक से मिली, ये पता करने के लिए कि क्या मैरिज एक्ट में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं कि राज कपूर साहब से उनकी शादी हो जाए, क्योंकि राज कपूर साहब ऑलरेडी मैरिड थे तब तक। ऐसा भी सुनने में आता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से नरगिस जी ने काफी अच्छे फिल्म ऑफर्स और काफी पैसा भी गंवा दिया। बट 1956 तक आते आते उनको ये रियलाइज हो गया कि इस रिलेशनशिप का एंड ट्रैजिक होने वाला है, और तब वो राज कपूर साहब की जिंदगी से और आरके फिल्म से बाहर निकल गई।
1: और अच्छे के लिए निकली ना। उसके बाद उन्होंने मदर इंडिया फिल्म की, जहाँ वो सुनील दत्त साहब से मिली।
0: तो क्या डायलॉग था, इफ इट इज नॉट दी हैप्पी इट इज नॉट दी एंडिंग। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

नरगिस जी, what a splendid career and what a beautiful life. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. हालांकि she was just 51 year old when she passed away, पर क्या जिंदगी जी उन्होंने. क्या इंसान, क्या एक्ट्रेस, क्या वाइफ, क्या मदर, क्या सोशल वर्कर थी वो. उन्होंने एज चाइल्ड एक्टर अपने करियर की शुरुआत की एंड शी टर्न्ड आउट टू बी दिस बोल्ड, फियरलेस, फाइस्टी, इंडिपेंडेंट वुमन थैंक्स टू हर अपब्रिंगिंग. उन्होंने अपनी लाइफ, अपने करियर के मेजरली डिसीजंस खुद लिए. कुछ थोड़े उल्टे पड़ गए, लेकिन प्यार मोहब्बत के मामलों में अपनी चलती कहाँ है. 8-9 साल के उस अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप से वो बाहर निकली एंड शी डिड दिस कल्ट फिल्म मदर इंडिया, जहाँ पे उनको जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा मिला, सुनील दत्त साहब के रूप में ट्रू लव. इस फिल्म के लिए नरगिस जी को वैसे फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था. और उनकी जो लास्ट फिल्म थी ना 1967 की रात और दिन, उसके लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला था. इसी फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनेंगे पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ. इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, RJ.charu इस नाम से. सुनते रहिए मिर्ची.

सुमन कल्याणपुर जी, इनका जन्म 1937 में ढाका में हुआ था, जहाँ पे इनके फादर की जॉब थी, वो बैंकिंग में थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इसी जॉब के चलते 1943 में इनकी फैमिली बॉम्बे आ गई, जहाँ पे अपनी पढ़ाई के साथ साथ सुमन जी ने संगीत सीखना शुरू किया। उन्हें पेंटिंग का भी बहुत शौक था। सुमन जी ने पहली बार कहीं पर पब्लिक सिंगिंग की तो वो थी ऑल इंडिया रेडियो के लिए। दिस हैपेंड इन 1952, जब वो 15 साल की होंगी। और पहली फिल्म जिसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड किया था वो एक मराठी फिल्म थी, ये 1953 में हुआ। और वो पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए इन्होंने गाना रिकॉर्ड किया ये थी 1954 की मांगू फिल्म। लेकिन जो फिल्म पहले रिलीज हुई वो थी दरवाजा, इसमें सुमन जी ने काफी गाने गाए थे। वैसे आपको पता है सुमन जी के हस्बैंड रामानंद कल्याणपुर ये बहुत सपोर्टिव थे। जब जब ये रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी उनके हस्बैंड भी उनके साथ रिकॉर्डिंग सेशंस में जाते थे। हाउ अडोरेबल इज दैट। इसी बात पे सुमन जी का गाया हुआ ये अडोरेबल सॉन्ग सुनेंगे, साथ में मोहम्मद रफी जी की आवाज भी है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने ये गाना लिखा है। 1967 की फिल्म फर्ज से है ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
4: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ तीन
3: करता हूँ।
4: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा।

0: ये नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है। मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है। कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार।
1: जुबी शरा वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
7: पुरानी जीन्स विद चारू।

रेडियो पे गाने सुनाने वाले लोग भी कई बार कंफ्यूज हो जाते थे कि ये लता जी की आवाज है या सुमन जी की आवाज है। कई बार फिल्म के रिकॉर्ड पे भी गलत नाम लिखा होता था। इस वजह से सुमन जी कहीं ना कहीं लता जी की अल्टरनेटिव या उनकी रिप्लेसमेंट बन गई कि जो गाने लता जी नहीं गा पाती थी या मना कर देती थी वो गाने फिर सुमन जी गाती थी। एक ऐसा बहुत लंबा फेज था जब लता जी ने रफी साहब के साथ गाने नहीं गाए क्योंकि उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उस टाइम सुमन जी ने रफी साहब के साथ बहुत सारे डुएट्स रिकॉर्ड किए। ये भी सुनने में आता है कि कुछ पॉलिटिक्स भी खेली गई थी जिस वजह से कई अपॉर्चुनिटीज सुमन जी तक नहीं पहुंचती थी। उनकी जिस तरह की आवाज है वो बहुत सारे सोलो सॉन्ग्स डिजर्व करती थी लेकिन इतने सोलो सॉन्ग्स उन्होंने नहीं गाए। खैर उन्होंने कभी इस बात के लिए कोई एलिगेशन किसी पे नहीं लगाया, कोई शिकायत नहीं की। उनका कहना था कि उनको जो मौके मिले वो उससे खुश थी। सुमन जी और रफी साहब का गाया हुआ ये क्लासिक हिट गाना सुनेंगे ब्रह्मचारी फिल्म से पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि सुमन कल्याणपुर जी की जिस तरह की आवाज थी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज या सक्सेस उनको नहीं मिला। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और इसकी मेन वजह ये थी कि उनकी आवाज लता जी की आवाज से बहुत मिलती जुलती थी, सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on

पुनर्जन्म की कहानी वाली फिल्म महबूबा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मुझे ना ये पिछला जन्म, पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन वाली जो थीम्स होती हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं। एंड सम ऑफ द मूवीज टू वॉच आउट अगर आपने नहीं देखी हैं ये पिछले जन्म वाली पुरानी हिंदी फिल्में, तो 1949 की महल फिल्म है, 1958 की मधुमति, वेल ओम शांति ओम फिल्म का जो क्लाइमेक्स है ना वो मधुमति के क्लाइमेक्स से ही इंस्पायर्ड है, देन 1968 की नीलकमल, 1967 की मिलन, एंड हाउ टू फॉरगेट 1980 की कर्ज। वैसे राजेश खन्ना साहब और हेमा मालिनी जी, इन्होंने दो ऐसी मूवीज में साथ में काम किया, एक तो जिसका गाना हमने अभी सुना था महबूबा का, और एक कुदरत फिल्म में भी ऐसी ही थीम थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब
4: मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Pirani Jeans with Charu, only on

नीरज साहब का लिखा हुआ गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये कवि नीरज हैं, गोपाल दास नीरज जी। इनकी पोएम्स, इनकी शायरी बहुत अच्छी लगती है भाई मुझे। इनकी एक गजल है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू है रान रहेगा, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा, जब तक मंदिर और मस्जिद हैं मुश्किल में इंसान रहेगा, नीरज तू कल यहाँ न होगा उसका गीत विधान रहेगा। नीरज साहब का लिखा हुआ एक और बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

चूहे को पड़ गए जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे।

Miserable थी उनकी लाइफ, drunkard husband, fighter wife, बीवी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े, अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े आ

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

भागा भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई। आई रे आई रे आई रे आई रे आई, पीना छूट गया

0: गलत बात है, ये बहुत गलत बात है जी, बहुत गलत बात है।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: ये इतना क्लासिक माइंड ब्लोइंग रोमांटिक गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात फिल्म का 1974 का ये गाना उस साल गीत माला में भाई और बहनों एनुअल लिस्ट में ये नंबर 11 पे था।
1: और कभी कभी मुझे लगता है उस टाइम रोमांटिक गाने इतने पॉपुलर नहीं होते थे, मतलब होते थे लेकिन ऐसे टॉप में नहीं आते थे लिस्ट में।
0: उस साल देखिए आप, नंबर वन गाना कौन सा था उस गीत माला में, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, सैड सॉन्ग। सैड में भी मेलेडी होती है, देखो अच्छे होते हैं वो गाने। अच्छा, नंबर टू पे जय जय शिव शंकर आपकी कसम का मस्ती वाला गाना, नंबर तीन पे भी मस्ती वाला गाना झूठ बोले कौवा काटे बॉबी फिल्म का, और यू नो सैड सॉन्ग्स लाइक तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये सब ये चुरा लिया है तुमने गाने से ऊपर रहे हैं उस एनुअल लिस्ट में। और एक और अति सुंदर रोमांटिक गाना जो हम सुनने वाले हैं वो तो उस साल के टॉप 30 में भी नहीं था, सत्ते पे सत्ता का दिलबर मेरे। अभी सत्ते पे सत्ता का दुखी पे दुखी हो ये शायद नंबर 16-17 पे था, लेकिन दिलबर मेरे तो था ही नहीं टॉप 30 में। गलत बात है, हम नहीं मानते, इतना सुंदर गाना है ये। खैर फिलहाल गाना सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
3: हेलो
4: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
3: हाँ जी बोलो।
4: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन?
3: हाँ जी देते।
4: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे, ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
3: कहाँ भिजवाना है
4: मैं आपको बता दो। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
3: हैं जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
4: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
3: किसको जी?
4: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
3: क्या गिर गया?
4: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
3: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
4: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
3: हाँ
4: सामान उठवा,
3: क्या मजाक कर रहा है?
4: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
3: उठवाना है।
4: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
5: हेलो
3: हेलो
5: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
3: कहाँ से बोल रहे
5: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।

22 साल का एसोसिएशन और यूं ही खत्म हो गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मैं बात कर रही हूँ म्यूजिक कंपोजर्स शंकर जयकिशन और राज कपूर साहब की। वही 1949 से 1971 तक इनका एसोसिएशन रहा और इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने बनाए गए। लेकिन 1971 में जब जयकिशन जी की डेथ हो गई, तब ऐसा सुनने में आता है कि लता मंगेशकर जी, इन्होंने राज कपूर को साफ साफ कह दिया कि भाई मुझे शंकर जी से प्रॉब्लम है और अगर वो म्यूज़िक बनाएंगे तो मैं आपकी फिल्मों में गाना नहीं गाऊंगी। और इसके बाद राज कपूर साहब ने शंकर जी से खुद को थोड़ा डिस्टेंस कर लिया और अपनी फिल्मों में दूसरे म्यूज़िक कंपोजर्स को लेना शुरू कर दिया। इस एसोसिएशन की सॉर्ट ऑफ लास्ट फिल्म जो हम बोल सकते हैं वो थी 1971 की कल आज और कल। ये कल आज और कल की फिलॉसफी फिल्म में तो डिफरेंट थी, लेकिन रिलेशनशिप्स एसोसिएशंस के बारे में सोचा जाए तो भी कितनी एप्ट है कि कल क्या रिलेशनशिप था, आज क्या रिश्ता है, कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: शादी का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो सुनो तो सुनो तो
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

आने वाले के नाम पे कुछ लाइंस याद आ रही हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आरजू लखनवी नाम के शायर हैं, उनकी एक नज्म के शेर हैं। आंख से दिल में आने वाला, दिल से नहीं अब जाने वाला, घर को फूंक के जाने वाला, लौट के नहीं फिर आने वाला, आंसू पोंछ के हंस देता है, आग में आग लगाने वाला, दी थी तसल्ली ये किस दिल से, चुप ना हुआ चिल्लाने वाला। ये सुनिए, ये बहुत ही बढ़िया है। डाल रहा है काम में मुश्किल, मुश्किल में काम आने वाला। ओए होए, आप भी जरा हमारे थोड़ा काम आइए, मुस्कान को कान तक ले जाइए और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आइकॉनिक कॉम्पोजिशन खयाम साहब की मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई खयाम साहब को 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं, एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक कभी कभी फिल्म के लिए, और फिर तीसरा उमराव जान फिल्म के लिए जिसका गाना हम सुनने वाले हैं। वैसे उमराव जान के म्यूजिक के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, मिलना ही था, इतना बेहतरीन म्यूजिक है। और इसका म्यूजिक कंपोज करने के लिए ना खयाम साहब ने बकायदा उस टाइम पीरियड की, जिस टाइम पीरियड में ये कहानी बेस्ड है, उसकी किताबें पढ़ी थी, अच्छे से रिसर्च वगैरह की थी, उसके बाद इसका म्यूजिक कंपोज हुआ था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. Na vidba la murga.
1: Milci, murga. हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय।
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
1: समाचार
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
1: फेवर,
2: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
2: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3
1: करता हूँ।
2: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: अपने सिर पे करवा ले।
2: शिवानी,
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना। शिवानी मेरी बात सुनो, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट पटाक। लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello,
2: Mr. Gotham. Sir, मैं actually आज से रहे हुए request करना चाहूँ. मैं तो आज सुना है फिर वो singing, winging सिखाते हैं sir. तो sir गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो sir थोड़े different होते हैं.
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था. तो स्नेक का ही घुस गया था. तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. सर नागिन क्या है सर नगीना फिल्म देखी आपने नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने.
1: हाँ सर कुछ गाके सुनाइए.
2: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद करने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने ना कोंडा फिल्म देखी है.
1: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको
2: भेज दो. वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
1: कौन सा गाने
2: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में यही बात है मेरे लिए. एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
1: सुन ले बात मेरी बात. हाँ सुन पहले बात.
2: हाँ सर
1: और इसे बंद करिए. बीन बीन जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा है.
2: सर बोलिए
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते. समझ गया ना तू बात है.
2: जी सर.
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे.
3: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता. आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया है मुर्गा बन गया आपका.

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी गर्मी च ठंड होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या, घंटा लेकर जाएगा।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
2: It's hot.

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या रिश्तों में एक बार पड़ी गांठ हमेशा के लिए दूरियां ले आती है या उसे दोबारा सुलझाया जा सकता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे रिश्ते जो होते हैं, जो बहुत क्लोज होते हैं, बहुत गहरे फ्रेंडशिप्स होते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो भाई बहन का हो, मियाँ बीवी का हो, कजन्स हो, बहुत सारे रिश्ते बहुत क्लोज होते हैं कई सालों तक, और फिर कोई अचानक कोई बात आ जाती है जिससे अनबन हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है, और कभी कभी उनमें सुलह हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का जो रिलेशन पहले था वैसा वो नहीं हो पाता। और जगजीत सिंह की कमाल की गजल है, उसमें कहते हैं कि गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, वो क्रीज रह जाती है। ऐसा क्यों होता है?
4: सिर्फ क्रीज रह जाती है, वो आपके बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज पर, जैसे एक हड्डी है, एक बार कहीं टूटती है, जुड़ जाती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर क्या कहेगा, थोड़ा संभालना, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा
3: सेंसिटिव है,
4: वीक है। तो ऐसा रिश्ता कि जिसमें ना कुछ हो, वो तो बहुत अच्छी बात है। माना इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि हमारा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हो, आर्ग्यूमेंट ही नहीं हो,
3: बहुत कम होता है
4: वो, बहुत कम होता
3: है, आज तक तो नहीं देखा मैंने।
4: माना वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर अब हम दूसरे लेवल पर जाते हैं कि अगर कुछ हो भी गया तो क्या उसको कोशिश करके हम उतना ही अच्छा बना सकते हैं। तो उसमें भी आपको कई रिश्ते मिल जाएंगे जहाँ ये पॉसिबिलिटी है, जैसे पेरेंट चाइल्ड है।
3: पेरेंट चाइल्ड शायद एकमात्र ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे ये बड़ी आसानी से आदमी भूल जाता है, मूव ऑन कर जाता है।
4: एकमात्र आप कह रहे हैं, वैसे तो एकमात्र नहीं है, पर कम से कम अगर आप एकमात्र कहते हैं तो भी पॉसिबिलिटी तो है।
3: पॉसिबिलिटी है,
4: आपको भाई बहन ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे हमने कितने बार आर्ग्यूमेंट होता है, झगड़ा भी होता है, पर हमारा प्यार कम नहीं होता।
3: नहीं होता है ज्यादातर, प्रोबेबली पेरेंट चाइल्ड एकमात्र, क्योंकि वहाँ ईगो नहीं है, क्योंकि पेरेंट को भी है कि भाई मेरा बच्चा है।
4: तो फिर कारण तो आपने खुद ही बता दिया ना क्या है। कारण क्या है? ईगो है
3: जी।
4: वहाँ आप लेट गो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपकी ईगो नहीं है, तो आप कहते हैं कि अच्छा इनका तरीका भले ठीक नहीं था, पर मेरे मेरे मेरे पेरेंट हैं, इनको हक है, इनको मुझे डांटने का हक है, या जो भी कह रहे हैं शायद मेरे बेनिफिट के लिए या होगा, या समवेयर डीप डाउन आप हर्ट भी होंगे ना उनके तरीके से, तो भी आपको समवेयर पता होता है कि इससे बेटर मेरे लिए अच्छा
3: कोई सोच नहीं सकता।
4: वो चीज आप अंदर, पर ये आप अपने को याद दिलाते हैं, ये आप अपनी ईगो को हटा करके समझते हैं कि ये मेरे अपने हैं, मेरे अपना मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, इनके दिल में मेरे लिए गुड विशेस हैं, एंड विच इज अ फैक्ट। आई थिंक जितने प्योर इंटेंट एक पेरेंट के होते हैं, एटलीस्ट 99%, चलो एक आध परसेंट कोई कारण हो सकता है, वो भी सर्कमस्टेंसेस कई बार उनको बिटर बना देते हैं,
3: वरना हमेशा तो भावना ही होती है।
4: हाँ, लेकिन कभी कभी जीवन के सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं जिसको आप फेस नहीं कर पाते
3: जी।
4: आप बिटर हो जाते हैं अपने आप से। बना कोई एक पेरेंट होता है, वो तो चाहता है मैं सबके लिए बेस्ट करूं, फिर कोई नौकरी छूट गई, आप अच्छा दे नहीं पाए, आप अपने से नाराज होते हैं
3: जी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आप जानते हैं, आपके अंदर जो होता है वही आप दुनिया को देते हैं। कैसे, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: पर कभी कभी हम ये नहीं समझते कि हम जो हैं वही हम अपने परिवार को देंगे। तो अगर हम नाराज हैं, अगर हम दर्द में हैं, अगर हम बिटर हैं, वही वाइब्रेशन किसी न किसी रूप से हमारे परिवार के पास जाएगा।
4: ऑरेंज है तो ऑरेंज जूस ही निकलेगा, एप्पल जूस तो नहीं निकलेगा।
3: एब्सोल्युटली। और इसीलिए फिर आप परिवार को कितना भी कहते रहे, हमें आपसे बहुत प्यार है, आप ही हमारे सब कुछ है, पहुंचता नहीं है। क्योंकि पहुंचता तो वही है जो आपका वाइब्रेशन है। तो इसी प्रकार से अगर किसी भी रिश्ते में आपने गांठ की बात करी, हर बार गांठों को ना खोलने की कोशिश नहीं करें।
4: अच्छा,
3: उसमें ईगो टकराता है। गांठ को खोलने का मतलब क्या होता है, चलो बैठ करके बात करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आपने रियलाइज किया होगा वो सॉल्व नहीं होता, कई बार कॉम्प्लिकेट हो जाता है,
4: क्योंकि शायद सामने वाला रेडी ना हो।
3: नहीं, दोनों अपनी जगह से राइट होते हैं, पर दोनों ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं राइट हूँ और आप रॉन्ग हो। पर कभी कभी गांठ को तोड़ के फेंक देना होता है। ठीक है, उस समय उनका मूड ठीक नहीं था, उन्होंने ऐसा बोल दिया, पर मुझे पता है ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, ये 10 साल का फ्रेंड है, इसकी भावना मेरे प्रति अच्छी है। होगा उस समय मूड खराब, कुछ कह दिया होगा, आपने गांठ तोड़कर फेंक दी। अब अगर आप इसमें चले गए कि इतना अच्छा फ्रेंड था तो कैसे बोला, कोई और बोलता तो चलता, पर इसने बोला ना इसलिए मुझे इतना दुख हुआ,
4: ज्यादातर यही चलता दिमाग में, तब क्या करें?
3: तो वही तो मैं आपको, वही तो हमने बात करी ना, एक है कि आप उस गांठ को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं अपनी सोच से, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत अच्छा दोस्त है।
4: लेकिन
3: हर व्यक्ति अच्छा दोस्त भी हर समय तो खुश नहीं हो सकता ना।
4: कभी कभी कुछ ऐसे मौके आए होंगे जहाँ वो भी परेशान होगा।
3: अब आप बहुत अच्छे दोस्त हैं पर मैं परेशान हूँ, तो न चाह करके भी मेरी परेशानी या मेरा दर्द ही आप तक पहुँचेगा। पर उस दिन आपका काम था उसको लेट गो करके मुझे ठीक कर देना, पर आपकी तो मेरे से ही एक्सपेक्टेशन थी कि मैं ही बहुत अच्छे से बात करूंगी और बहुत अच्छे से व्यवहार करूंगी। सो व्हेन यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स, आपको उसकी अच्छाई बुराई दोनों में साथ होना पड़ता है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट चाइल्ड हो, अच्छे फ्रेंड्स हो, हमेशा वो परफेक्ट होंगे, हमेशा ही वो
4: जरूरी नहीं, पॉसिबल भी नहीं,
3: पॉसिबल भी नहीं है।
4: बिल्कुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: रिश्तों में लेट गो करना उन्हें और मजबूत कैसे बना सकता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मतलब समवेयर इन रिलेशनशिप्स ना आपको थोड़ा थोड़ा लेट गो करना होता है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि वो उस समय उसका मूड ठीक नहीं था, वो उस समय दर्द में था, और तो कोई कारण होता ही नहीं। और क्या कारण है? When I am not behaving well with you, हम कई बार ये बात कहते हैं कि दुखी व्यक्ति ही दुख दे सकता है।
4: बिल्कुल, hurt people.
3: मैं अंदर से खुश हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे कुछ बोल भी देंगे ना, so I will just smile and say जाने दो ना, कोई बात नहीं, अभी ठीक नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे।
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: क्योंकि खुशी इमोशनल स्ट्रेंथ है। खुशी सिर्फ खुशी नहीं है, वो एक स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ जब मेरे पास होती है, पावर होती है, तो मैं कहता जाने दो। लेकिन जब मेरे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, मैं अंदर से कमजोर हूँ, तो मैं आपकी बातों को पकड़ लूंगी, फिर उसको रिपीट करते जाऊंगी, फिर उस स्क्रैच का वुंड बनाऊंगी, फिर उस वुंड का आपको ब्लेम करूंगी, फिर हम वेट करते हैं कि वो आएंगे, वो सॉरी।
5: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRB Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: इमोशनल स्टेबिलिटी आपको हर कठिन सवाल का शांत जवाब देना कैसे सिखाती है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आप कहते हैं कि ये ज्यादातर तब होता है जब आप इमोशनली स्टेबल ना हो, लेकिन ये 4-5 साल से हो रहा है, तो 4-5 साल तक तो उन्होंने इसको हैंडल ही किया है, परेशान नहीं हुई, जवाब नहीं दिया,
4: तो एक्सपर्ट हो जाना चाहिए।
3: लेकिन उसके बाद अगर एक ही सवाल आपसे बार बार पूछा जाए तो कहीं ना कहीं आपको लगता ना, अरे नहीं देना जवाब भाई, आपको क्या परवाह है।
4: नहीं, इसमें सी पहले तो अगर सेम पेपर बार बार आता है ना, तो आपको उसमें एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। बट सेकंड बात ये है कि इसको 5 साल तक कंटिन्यू नहीं करेगी, आपका जॉइंट डिसीजन है
3: जी।
4: मैं जो बात कर रही थी कि डिस्टर्ब होना ना होना वो आपकी चॉइस है, लेकिन आप बिना डिस्टर्ब हुए बहुत स्टेबिलिटी से एक टफ कॉन्वर्सेशन करें उनके साथ। आप उस बात को चलाएं नहीं, आप उस बात को इग्नोर नहीं करें, पर आप कुछ ऐसा करें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो। तो आप अपने हस्बैंड को कन्विंस करके या जिसकी भी जो भी घर में समस्या है, आमने सामने बैठ करके एक टफ कॉन्वर्सेशन करें कि ये हमारा डिसीजन है, जब हमें करना है आप रोज ऐसा ना करें। आई हैव अ फीलिंग कि जब आप असर्टिवली कोई चीज कहते हैं, आप चला लेते हैं तो सामने वाले भी वो चीज करते जाते हैं। जब आप थोड़े से असर्टिव होते हैं तो सामने वाला थोड़ा सा केयरफुल हो जाता है, कहेगा पर उतना नहीं कहेगा। और फिर भी अगर आप, जो मुझे पता है आपका अगला सवाल होगा कि हम असर्टिव भी हो गए हैं लेकिन फिर भी वो करते हैं कई बार हम कहते हैं, तो फिर वो उनका रोल है ना। हम किसी को तो नहीं बदल सकते हैं। अगर हम ट्राई भी कर लिया, हमने उनको कह भी दिया, थोड़ा बहुत चेंज आया, बहुत चेंज नहीं आया, तो हम में से किसी के अंदर भी, एक योगी के पास भी किसी दूसरे को बदलने की ताकत नहीं है। हमारे अंदर यही ताकत है कि दूसरे के संस्कारों से हम डिस्टर्ब नहीं हो, अपनी बात कहें और कह करके न्यारे हो जाएं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: आएगा।
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज The king of mortgage industry.
2: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
3: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
4: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
5: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
4: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
6: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: टफ कॉन्वर्सेशंस कई बार रिश्तों की हीलिंग कैसे बन जाती है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो मेरा अगला सवाल ये नहीं था कि असर्टिव होके भी बोल लिया, मेरा अगला सवाल ये होने वाला था कि असर्टिव होने के बाद अगर कॉन्वर्सेशन कर लें तो ज्यादातर सामने वाले से ये जवाब आता है कि अब तो हम ये भी नहीं बोल सकते अपनों को, ये क्या बात हुई। तो आपको लगता है भाई मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मुझे दिक्कत है इस बात से, हमारा डिसीजन है, आप उस बात का भी ताना देते हैं कि हम तो गैर हो गए, हम तो ये भी नहीं बोल सकते, हम तो बच्चे का मुंह नहीं देखेंगे, और आपको लगता है यार ये ड्रामा नहीं चाहिए मुझे।
4: नहीं, ये ड्रामा नहीं है ना, आप उनको भी तो समझे, ये उनकी भी तो एक आश है। देखो, हम पहले से ही कॉन्वर्सेशन करने से पहले ही अगर नेगेटिव हो जाएं सामने वाले के बारे में, दैट इज व्हाई आई सेड द फर्स्ट स्टेप इज नॉट टू गेट डिस्टर्ब। जैसे एक आपकी जीवन जीने की इच्छा है कि हमें ऐसा रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, वी डोंट वांट अ चाइल्ड, वी डोंट वांट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक आपकी इच्छा है, आप अपनी लाइफ ऐसे देखते हैं। हो सकता है सामने वाले ने ऐसी लाइफ देखी हो कि मेरा ग्रैंड चिल्ड्रन आएगा, बहुत इंतजार हो, बहुत खुशी हो, वो कोई आपके लिए गलत तो नहीं सोच रहे ना, वो सोच तो आपके लिए अच्छा रहे, पर आपकी सोच अलग है। आप जब उनको समझेंगे और उनको रिस्पेक्ट देंगे तो हो सकता है वो आपकी बात समझे, पर आप अपने मन में सोचे कि ये मुझे समझते नहीं है, ये मुझे ताना मारते हैं और ये ड्रामा करते हैं, अगर आप ऐसे ऐसा सोचेंगे तो वो तो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। तो हम अपनों के बारे में पहले इतना गलत क्यों सोचते हैं, ये लाइन भी कहना, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन लाइन, ड्रामा करते हैं, तो हम कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं उनको, तो वो ही थोड़ी ना तंग कर रहे हैं, हम भी तो उनके बारे में गलत सोच करके उनको तंग कर रहे हैं।
3: प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई लेकिन सिस्टर,
4: आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करना कहते हैं ना, हम सोचते हैं सामने वाला बदल जाए तब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं होता है। प्रॉब्लम तभी सॉल्व होती है कि सामने वाला नहीं भी बदला, पर हम उससे डिस्टर्ब नहीं हुए और हमने अपनी स्टेबिलिटी के साथ उनको अपनी बात कहने की कोशिश करी, कन्विंस करने की कोशिश करी, बार बार रिस्पेक्टफुली अपनी बात कही, उसके बाद भी अगर वो नहीं बदलते और नहीं मानते तो हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो शुभ भावना है वो उनके लिए कम नहीं होती। दैट्स व्हेन आई हैव प्लेड माय पार्ट वेल, और एंड में मुझे मेरा ही चार्ट भगवान को दिखाना है, उनका नहीं दिखाना है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची It's hot.

0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करे 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
2: बॉम्बे एक्सप्रेस एंड वैष्णो केटरर्स, अमेरिका में सबसे बेहतरीन इंडोर और आउटडोर केटरिंग सेवा। सगाई, शादी, बेबी शावर, जन्मदिन पार्टियां और एडल्ट डे केयर, आपके स्थान पर लाइव कुकिंग की सुविधा। हम अमेरिका में ताज़ा फरसान और मिठाइयां बनाते हैं। हम न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में सोमवार से शनिवार तक डिलीवरी के साथ टिफिन सेवा भी प्रदान करते हैं। आज ही बॉम्बे एक्सप्रेस और वैष्णो केटरर्स को कॉल करें 732-986-6241 और विजिट 2849 वुडब्रिज एवेन्यू, एडिसन, न्यू जर्सी।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिंदगी के स्टेज पर खुद की बेहतरी पर फोकस कैसे करें? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: हम सबको अपने कर्मों का जो लेखा जोखा है उसका हिसाब किताब देना है, हमें उनके कर्मों का नहीं देना है। तो अगर हम इतने एंटेंगल होते जाएंगे, जैसे आप थिएटर में हैं, आप वहाँ पर स्टेज पर जाते हैं, आप जिस समय स्टेज पर जाते हैं आपका सारा अटेंशन किस पर होता है?
4: खुद पर होता है।
3: मेन तो आपका खुद पर ही होगा ना। मेरे को अपना डायलॉग ठीक से बोलना है, अपना परफॉर्मेंस ठीक से देनी है। अगर वहाँ कोई डायलॉग भूल भी जाता है तो भी आप कोशिश करते हैं कि आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दें कि किसी को पता नहीं चले, या प्रॉम्प्ट करें। पर आप वहाँ पर खड़े होकर के उनको याद नहीं दिलाना शुरू कर देते कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपने सारा ड्रामा खराब कर दिया, तो वो खराब ही हो जाएगा सारा। सी इवन इन लाइफ, सी वी हैव टू अंडरस्टैंड, इवन इन लाइफ माय एम एंड माय गोल इज टू प्ले माय पार्ट वेल एंड फ्रॉम माय पार्ट। इसलिए लीडरशिप के लिए हमेशा क्या कहते हैं, द बेस्ट फॉर्म ऑफ लीडरशिप इज टू लीड बाय एन एग्जांपल। क्योंकि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, जो बोल मैं बोलूंगा उसको सुनकर और करेंगे, ऐसा नहीं है। जो मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। इसलिए जो फेमस लीडर्स हैं, गांधी जी हैं, उन्होंने भी क्या किया, जो भी आपको औरों से कराना था वो पहले खुद किया। चाहे वो आपके खाने में चेंज है, रहने में चेंज है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू इट। सो यू कैन ओनली प्ले योर पार्ट एंड देन यू इंस्पायर अदर पीपल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: putting the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: इट्स 7 o'clock, मिर्ची टाइम चेक।
0: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels. Best quality, best price.
1: It's 7:30 AM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels. Best quality, best price.
3: Type C केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर विद्युत शाह का एक सवाल है कि क्या स्पिरिचुअलिटी हमारी असक्षमताओं को और असफलताओं को छुपाने का इजी तरीका है?
2: एब्सोल्युटली नॉट। उनको एक्सेप्ट करने का तरीका है और एक्सेप्ट करके उनको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है।
1: तो एक्चुअली हमको सक्षम बनाने का तरीका है और सफल बनाने का तरीका है।
2: स्पिरिचुअलिटी, आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, बट स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है। तो फिर जो आपको करना है वो आप कर पाते हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ कर नहीं पाते तो हमें लगता है हम फेलियर है। हम फेलियर नहीं होते। आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम नॉट इनएफिशिएंट, और इट इज जस्ट आई हैव नॉट टेकन आउट दैट टाइम टू वर्क ऑन माय सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी आपको एम्पावर करती है।
1: आई डोंट नो ये किस मुद्दे से या मकसद से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जो इंसान जिंदगी को आराम से ले रहा होता है या जो सहज मन से चलता है, जो शांत होता है, उसको वीक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं शायद वो सवाल वहां से आ रहा होगा कि क्या ये हम अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: कई लोग ऐसा समझते हैं, ये भी एक आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। इनफैक्ट कॉर्पोरेट शादी में भी कई बार टॉक होगा ना, तुमको कहेंगे आप इतना शांत नहीं कर देना इतना। सो समवेयर यू फील कि स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू वेरी कंटेंट इन लाइफ, फिर तो कोई डिजायर नहीं होगी, फिर आप भागेंगे नहीं, फिर आपके गोल्स नहीं होंगे। एक्चुअली वो पर्पस नहीं है। पर्पस क्या होता है कि हम अपनी जर्नी को एंजॉय कर सके। वैसे भी आप देखें, जैसे एक आप पहाड़ भी चढ़ते हैं तो आपको व्यू तो ऊपर से ही मिलता है, है ना? लेकिन जो आप बनते हैं वो चढ़ने से बनते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी, आपने जो एंजॉय किया वो समिट पे जो आप जो व्यू है ना, वो बेसिकली रिजल्ट है। वो एक गिफ्ट की तरह है। तो देखने में लगता है कि इट इज द एंड गोल, बट जो आपको बनाता है इट इज ऑलवेज द जर्नी। सो स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज फोकसेस ऑन द जर्नी कि मान अपमान है, निंदा स्तुति है, हार जीत है, सफलता असफलता है, इट इज ओके। हर चीज आपको ग्रो करती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग थ्रू इट, इट्स अबाउट ग्रोइंग थ्रू इट। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट चैलेंजेस, बट द चैलेंजेस आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू ग्रो। तो बेसिकली वो आपको वीक नहीं बनाती, वो तो बहुत आपको स्ट्रांग बनाती है। इनफैक्ट जिस समय पर आप कोलैप्स कर सकते हैं उस समय पर भी आप बहुत स्टेबल खड़े होते हैं। लेटली आई मेट दिस सिस्टर, एक ट्रिप पे थी तो उन्होंने सुनाया कि वो स्पिरिचुअलिटी में उनको सिर्फ 4 months हुए थे चलते हुए। वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करती है, क्लास करती है, और उनकी डॉटर थी जिसको अचानक हेडेक्स होने शुरू हुए।
1: अच्छा।
2: अब वो खुद भी डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, और एक ही डॉटर है 9th standard में।
1: अच्छा।
2: और पहले की बात सुना रही थी कि उसको काफी हेडेक्स हुए, उन्होंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया, चेकअप कराया, डायग्नोस ही नहीं हो पाया क्या हो रहा है। सीवियर हेडेक्स पर डायग्नोस नहीं हो पा रहा। एंड शी सेड कि मैंने अपना जॉब छोड़ा क्योंकि उसको होम स्कूलिंग करनी पड़ी। वो स्कूल नहीं जा पाती थी। देन इट बिकेम सो सीवियर कि वो ब्रश करने गई और वहीं गिर गई, बेहोश हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कि वो कर रही है। एंड दिस कंटिन्यूड फॉर 4 years। 4 years she said we went to the best doctors indoor mein, mumbai mein, everywhere, neurosurgeon sab kuch, par diagnosis hi nahi hua. 4 years ke baad wo ekdam khatam ho gaya.
1: Achha.
2: Kya bimari thi pata nahi. Then she could go back to college, abhi wo bhi apni medicine kar rahi hai. But she said wo 4 years ka jo period tha itna challenging, agar main spiritually strong nahi hoti, stable nahi hoti, to kabhi bhi hum usko cross nahi kar pate, kyunki us samay par usko homeschool karna, treatment dena, उसके दर्द से परे रहना। एंड शी सेड दिस स्टेटमेंट विच वी लर्न, शी सेड हम जो एक लाइन कहते हैं, साक्षी होकर के देखो तो वातावरण का सेक भी नहीं पड़ेगा। मतलब इफ यू आर डिटैच्ड, डिटैच का मतलब बच्चे से डिटैच नहीं, बच्चे के दर्द से बहुत पेनफुल है ना, आपका योर ओन चाइल्ड इज इन सो मच पेन। सो डिटैच आप किससे हो रहे हैं? नेगेटिविटी से, दर्द से, सिचुएशन से नहीं, व्यक्ति से नहीं। हम डिटैचमेंट किससे समझते हैं? व्यक्ति या परिस्थिति से।
1: बहुत खूबसूरत।
2: यू आर इन द मिडल ऑफ दैट सिचुएशन, आप उस समय पर हैं। एंड दैट इज वाई स्पिरिचुअलिटी जो है, हम कहते हैं कि अगर आप साक्षी होकर के देखेंगे तो वातावरण का सेक नहीं पड़ेगा, माना जो एनवायरमेंट है
1: उसका
2: इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। सो स्पिरिचुअलिटी आई फील इज नॉट मेकिंग यू वीक, इट इज रादर गिविंग यू दैट स्ट्रेंथ टू डील विद व्हाटएवर चैलेंजेस यू आर गोइंग थ्रू।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो, सारे अलार्म्स तुम्हें जगाते नहीं है, कुछ ऐसे भी अलार्म्स होते हैं जो तुम्हें सोने पर मजबूर कर देते हैं, वो भी दोबारा, जैसे कि व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस, वो भी स्पेशली फैमिली ग्रुप से आने वाले। पर अभी फिलहाल वैसा कोई नोटिफिकेशन नहीं तुम्हारी लाइफ में। मैं बोले तो प्रिसिला आ चुकी हूँ लेकर तुम्हारा फेवरेट मॉर्निंग शो, नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर आकर तो कॉफी मशीन, लैपटॉप, तुम्हारा एसी, टीवी, फ्रिज सब स्ट्रेच करने लग जाते हैं। So whether you're driving to work right now या फिर घर पे बैठकर काम करने का सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ अगले कुछ घंटों के लिए और हम ढेर सारी गॉसिप, गपशप, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर करने वाले हैं राइट हियर राइट नाउ। मिर्ची मॉर्निंग्स की शुरुआत हुई है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। फटाफट से जाओ मुझे फॉलो करो। मेरा नाम है मिर्ची प्रिज ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। ड्रॉप मी अ मैसेज राइट नाउ एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La fie bala burka. Mirci, burka.
2: Alo.
3: Alo, usko vahan se mat uthao, yaar. Alo.
2: हेलो
3: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब इसको वहां से मत उठाओ यार ऐसे नहीं उठाएगा यार टूट जाएगा सारा सामान टूट जाएगा वहां से मत करो उसको वहां से हेलो हेलो भाई साहब
2: हाँ जी बोलो
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन
2: हाँ जी देते
3: एक सेकंड होल्ड करना उसको वहां से मत उठा यार मैं तेरे से बोल रहा हूँ दो टुकड़े हो जाएंगे सारे मत उठा नहीं उठेगा तेरे से ये सामान भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ ये मशीनें बंद कर दे मशीनें बंद कर दे सारी मशीन बंद कर दे शायद सारी बंद कर दे ये गिर गया है और इसको उठाना है यार ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है कितना सामान उठाता
2: है जी उठवा लेंगे उतना ही हम
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को हाँ ये आप ये भेज दो ये इसको इसको उठवा दो यार ये तो गिरा पड़ा यार ये इसकी वजह से सारी परेशान है
2: किसको जी
3: सेंसेक्स गिर गया है इसको उठवा दो आप
2: क्या गिर गया
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो सेन नीचे रह जाए तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी
2: भाई साहब क्या उठवाना है
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको
2: हाँ
3: सामान उठवा
2: क्या कर रहा है
3: तो मार्केट गिर गया यार मार्केट गिर गया उसमें सारे सारे परेशान है यार आप उठवा नहीं सकते तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ सेंसेक्स गिर गया यार
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो सेंसेक्स उठवा दो यार कब से गिरा पड़ा हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और फोन मत काटिएगा मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते मार्केट की बात कर रहा था क्रेन किराए पे देते हैं आपका मुर्गा बन गया आप रेडियो मिर्ची पे हैं हेलो
2: कहाँ से बोल रहे
4: हैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिव जी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति अधिक जानकारी के लिए 7323578200 जय गुरुदेव
9: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
11: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
12: Chamakte Sitare 2026.
11: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: Tera kya hoga, Kalia?
16: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
15: Ab, mirchi kha.
17: Radio Mirchi, it's hot.

मिर्ची की टाइम मशीन एंड पता करते हैं आज के दिन क्या हुआ था। लेट्स बिगिन इन 1756 वेयर फोर्ट विलियम इन कोलकाता वाज सरेंडर्ड टू नवाब सिराजुद्दौला एंड लेट्स जस्ट से थिंग्स एस्केलेटेड फास्टर देन एनीथिंग एल्स। फास्ट फॉरवर्ड टू 1924 व्हेन द यूएस साइंड द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफिशियली ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू नेटिव अमेरिकन्स बोर्न इन द कंट्री। देन केम 1946 व्हेन इटालियंस सेड यू नो व्हाट लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। दे वोटेड टू एंड द monarchy and created the Italian Republic. 1953 May, the world watched history in real time as Queen Elizabeth II was crowned in London. It became the first major international event to be televised globally. And then in 1966, Surveyor 1 landed on the moon. Jumping to 1997, Timothy McVeigh was found guilty for the Oklahoma City bombing, bringing an important moment of justice after the tragic chapter in American history. And finally, 2014 May, Telangana officially became India's 29th state. Aur isi tarah ke aur fun facts chahiye to mujhse touch mein raho. Mera naam hai Mirchi Priz, that is MIRCHIPRIS, Instagram aur X par. Wahan par jaake mujhe follow karo aur WhatsApp par mujhse baat kar sakte ho 9033 Mirchi par. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

है तू अक्सर, पूरी कयामत होगी ना छोड़ी है कोई कसर। Top to bottom marks, तुझे दिए मैंने 10 out of 10। क्यों नहीं चाहिए, चल ओके देन। भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल ही तू, कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल।

0: SG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my dost. मैं हूँ तुम्हारी host. नाम है Priscilla. Show का नाम है Mirchi Mornings. And here's today's scene. Weather-wise, right now we are sitting at a cool 49 degrees Fahrenheit, and it's pretty sunny. लेकिन thanks to the wind, it's feeling more like 48 degrees. And good news ये है कि no rain, 0 millimeters in the last 24 hours, and 0 is expected in the next 24 hours. तो अपने umbrella को आज officially घर पर छुट्टी दी जा सकती है. And now temperature-wise, we are starting the day with 47. Degrees Fahrenheit and climbing all the way to a beautiful 77 degrees Fahrenheit. And this afternoon, 2 baje se lekar 5 baje ke beech mein expect a little bit of partly cloudy skies. Then 5 baje ke baad se clouds will get a little more serious and they'll turn mostly cloudy. वैसे बहुत ज़्यादा dramatic नहीं होने वाले हैं आज, तो Instagram पर light filter लगाकर selfie लगाना तो बनता है. And आज का high is actually pretty similar to yesterday's. कल का highest था 73 degrees Fahrenheit और आज we are aiming for 77 degrees Fahrenheit. तो याद रखो बाहर निकलते टाइम SPF 50+++, साथ साथ में लेयर के प्लेयर बनो और अपने आप को हाइड्रेटेड रखो और मिर्ची सुनते रहो. मेरा नाम है Priscilla, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स. मुझसे कनेक्ट कर सकते हो तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
4: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ तीन
3: करता हूँ।
4: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी शिवानी शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी मेरी बात सुनो,
3: नहीं नहीं
4: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ूबी शरा वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
11: Chamakte Sitare 2026.
10: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
12: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
13: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
14: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
15: Oak Tree Road Low, best diamond jewelry kosam search is Tanara, Krishna Jewelers Me, exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, Mario stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
17: तेरा क्या होगा कालिया?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा।
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings.
2: Mirchi Watch It. Mirchi Watch It.
1: A free Indian mango party in San Francisco has gone absolutely viral during huge crowd and even longer lines. And honestly, if you've ever tasted a juicy Alfonso or sweet Kesar, you already know this wasn't a queue. It was a pilgrimage. People got to sample some of India's most beloved mango varieties. And one attendee even called them the best mangoes I've ever had. Videos from the event showed crowd celebration and enough mango love to make every Desi person proudly say, मेरा भाई मैंगो लवर है. एंड यू नो व्हाट आई लव द मोस्ट, नो मैटर हाउ लॉन्ग वीव लिव्ड अब्रॉड, वन बाइट ऑफ अ प्रॉपर इंडियन मैंगो कैन इंस्टेंटली ट्रांसपोर्ट अस बैक टू समर वेकेशन. स्टिकी फिंगर्स, पावर कट्स, कजिन्स एंड इन सब के साथ हमारे फैमिली मेंबर्स भी सर्वाइव कर रहे थे. एंड नाउ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स एंड ड्रॉप मी अ हाय. माय हैंडल नेम इज मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून and stay hot.
3: Yeah, here we go again. Authentic, original, and better than our right.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ मिस्टर रिदम मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब बारी आ चुकी है बर्थडे शाउट आउट देने की. वी गॉट वेन ब्रेडी, केविन फीड, डेनिस हेसबर्ट, मोरेना बकारिन, ओक्वाफीना, जस्टिन लॉन्ग, जैकरी क्विंटो, डेना कार्वी, चार्ली वॉट्स, फैब्रिजियो मोरेटी, थॉमस हार्डी, मार्कस डिसाडे, सर्जियो एग्यूरो, राफेल नडाल एंड स्टीव वॉ. एंड अगर तुम्हारे भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है तो तुम भी मेन कैरेक्टर एनर्जी में आज केक खाना, कैलोरीज की बिल्कुल परवाह मत करना. एंड वंस अगेन आई एम विशिंग यू हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
4: Wow, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें Miss India Bridal Store.
4: Explore our stunning bridal lehengas और exclusive reception wear.
5: Plus, grooms के लिए royal sherwanis.
4: Miss India, आज ही विजिट करें 79 Middlesex Avenue, Hislin.
6: Inefficient,
7: very complex,
8: clumsy,
9: confusion ही confusion.
5: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, my gold lovers. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हम पता करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर का आज का हाल क्या है।
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,540, $4,540 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड के प्राइस अमेरिका में इंडिया से अबाउट 15% चीपर है। जी हाँ, आपने सही सुना, हिंदुस्तान से अमेरिका में गोल्ड के प्राइस सस्ते हैं। कैसे? आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए राज ज्वेल्स के टीम मेंबर से समझें कि किस तरह से 15% गोल्ड का प्राइस अमेरिका में इंडिया से सस्ता है, और गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू
1: एंड देयर यू हैव इट, द लेटेस्ट रेट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6 4 7 2 4 4. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब टाइम है अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स का. सबसे पहले द यूएस मिलिट्री हैज कैरिड आउट व्हाट इट कॉल्ड सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक्स इन सदर्न ईरान, टारगेटिंग मिसाइल लॉन्च साइट्स एंड बोट्स लेइंग माइंस नियर बंदर अब्बास एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ऑफिशियल्स सेड द स्ट्राइक्स वर एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ट्रूप्स व्हाइल नेगोशिएशंस आर रिपोर्टेडली स्टिल कंटिन्यूइंग. एंड नंबर टू पर, देसी मॉम्स एवरीवेयर आर ऑफिशियली विनिंग. जस्ट डेज आफ्टर 23-year-old तुषार कुमार बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन ओरिजिन मेयर्स इन द यूके, his mom Parveen Rani also became mayor. The family moved from Rohtak, Haryana to the UK in 2013, and now both mother and son are making history together. And number three per, Taiwan has reportedly overtaken India in market size despite having a much smaller GDP. Financial experts are discussing how Taiwan's market capitalization has now edged slightly ahead. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me Priscilla on Mirchi Mornings. Mujhse connect karo Insta aur X par, mera handle name hai Mirchi Pris, that's MIRCHIPRIS, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot. Yeah.

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello, Mr. Gotham. Sir, मैं actually आज रहे हैं वह request करना चाहिए. मैं तो आज सुना है फिर वो singing, winging सिखाते हैं sir. तो sir गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो sir थोड़े different होते हैं.
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था. तो स्नेक का ही घुस गया था. तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ. सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन का है सर. नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर, कुछ गा के
2: हाँ वही सर. नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद करने हैं सर वो देखा है ना. कोंडा आपने ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ.
2: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
3: कौन से गाने
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे. कौन बजाए बांसुरिया? सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
3: सुन ले बात
2: मेरी. बात
3: सुन पहले बात.
2: हाँ सर.
3: और ऐसा बंद करिए, बीन बीन जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है. सर बोलिए.
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
2: जी सर.
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। इट्स टाइम फॉर मिर्ची आवर का 3 ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले रिपोर्ट्स से द यूएस इज अर्जिंग ओमान, व्हिच हैज लार्जली मेंटेन्ड अ न्यूट्रल पोजीशन, टू चूज अ साइड एंड रिड्यूस टाइज विद ईरान। द डिस्कशन कम्स अमिड टेंशन्स सराउंडिंग द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स। नंबर टू पर नेपाल्स रूलिंग पार्टी प्रेसिडेंट रवि लमिशा ने रिसीव्ड क्वाइट द वेलकम एट बीजेपी हेडक्वार्टर्स। वी टॉकिंग रेड कार्पेट, फ्लावर पेटल्स, ढोल एंड डांसिंग। एंड नंबर थ्री पर अ मोर सीरियस अपडेट फ्रॉम भोपाल, अ की विटनेस इन द ट्विशा शर्मा केस। अ की विटनेस इन द ट्विशा शर्मा डेथ केस हैज अलेज्ड दैट ही वॉज कन्फ्रंटेड एंड थ्रेटन्ड बाय इंडिविजुअल्स कनेक्टेड टू द अक्यूज्ड। अथॉरिटीज आर एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर फर्दर। एज ऑलवेज द लीगल प्रोसेस शुड बी अलाउड टू टेक इट्स course, and everyone's safety and right to testify freely remains important. And that's it for Mirchi Hour ka 3 for this hour. Main hu Prisala tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par, mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
3: Chamakte Sitare 2026.
2: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: नमस्ते इस्लाम एंड सत श्री अकाल भाई और बहनों, आई एम सुजीत सिंह रनिंग फॉर कांग्रेस इन NJ12, ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर वॉइस टू वाशिंगटन। विजिट singforcongress.org एंड गेट एंगेज्ड।
7: June 2nd, 2026. Early voting dates May 26th to May 31st. Sujit Singh is the change we need.
6: Paid for by Sujit Singh for Congress.
8: Oak Tree Road low, best diamond jewelry kosam search is Sunara Krishna Jewelers me exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hello there, my Rashi Zoners. I am Priscilla. You are listening to Mirchi Mornings. And you guessed it right. It's time for Stars Ki Baat.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: लिब्रा यानी तुला राशि, पीपल प्लीजिंग बंद कर दो थोड़ा सा. आज अपनी हैप्पीनेस पे भी इन्वेस्टमेंट करो बॉस. लकी कलर इज चेरी रेड. लकी नंबर इज 25. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज इम्पॉसिबल वर्ड तुम्हारी डिक्शनरी से ऑफिशियली डिलीट हो गया है. गो क्रश इट पोलाइटली और ड्रामेटिकली. लकी कलर इज मिडनाइट पर्पल. लकी कलर इज 66. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आज का मंत्रा इग्नोर डाउटर्स लाइक स्पैम कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स. फुल फोकस मोड ऑन करो. लकी कलर is burnt orange. Lucky number is 14. Capricorn yani makar rashi, if someone isn't matching your hustle, emotional uber ride cancel kar do. Energy expensive hoti hai, spend it wisely. Lucky color is steel gray. Lucky number is 31. Aquarius yani kumbh rashi, time to declutter your room and maybe your situationship too. Emotional spring cleaning activate kar lo. Lucky color is aqua mint. Lucky number is 9. And last but not the least, Pisces yani mean राशि, आज someone with matching vibes may enter your orbit. Could be friendship, could be romance, or just could be a fellow foodie. Lucky color is rose pink. Lucky number is 72. And ये याद रखो, horoscope future predict करे या ना करे, तुम्हें अपनी life में decisions खुद लेने हैं. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स. जाकर मुझे फॉलो भी कर लो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज एक्स. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. That's 9033 6472 44. Stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ऑलराइट माय दोस्त, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारी होस्ट। शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब टाइम हो चुका है ऑफिशियली मेरा पेटी पैक करने का, यानी कि यहाँ से टाटा बाय बाय बोलने का। बट बिफोर आई गो, एक स्पाइसी लिटिल हेडलाइन तो बनती है। अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस रिसेंटली टुक अ शार्प जैब एट न्यूयॉर्क सिटीज मैसिव एजुकेशन बजट। वी आर टॉकिंग अ वॉपिंग $43 billion। बेजोस जोक्ड दैट इफ अमेजोन ऑपरेटेड द सेम वे, योर पैकेजेस वुड टेक 6 weeks टू अराइव, cost $100 in delivery fees and still show up wrong. Imagine ordering AirPods and receiving a pressure cooker. Honestly though, some of us have lived that immigrant online shopping trauma. He also claimed that the money isn't really reaching teachers the way it should. Now obviously education budgets are serious business and involve a lot of complicated policies and debates, but social media definitely grabbed popcorn after Bezos dropped the one-liner. And honestly, only in America can your Uber arrive in 2 minutes, but one school form takes 19 emails, 3 PDFs, and a parent signature in blue ink only. Why blue ink specifically? Nobody knows. But on that note, meri jaan log, my time with you today is officially done. Thank you for hanging out with me through the gossip, music, masti, and much more. Milungi tumhe kal, same time, same place, same frequency. Tab tak ke liye namaste, tata, bye bye, alvida, and you be good, have fun. खाओ पियो, ऐश करो, और मुझे याद करोगे तो मुझे फॉलो कर लो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: पुरानी यादों में ऐसा क्या होता है कि हम हमेशा उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, एज इफ ये पुरानी यादें ना होकर मैग्नेट हो? वेल, ऑन अ रीसेंट ट्रिप टू हैदराबाद, आई एक्चुअली फाउंड द आंसर टू इट.
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara, aapki 90s ki yaadon ka pitara. And now you tune in with me on Mirchi. And on my recent trip to Hyderabad, mujhe ek baat samajh mein aayi ki hum purani yaadon ki taraf khinche chale jaate hain because of the reason ki hum purani yaadon mein comfort paate hain, sukoon paate hain. Aur tabhi hum chahte hain कि यार पुरानी यादों से जुड़े कोई भी किस्से हो, कोई भी बातें हो, कोई भी जगह हो, कुछ भी हो, हमें वहां पर जाकर उनको रीलिव करने में बड़ा मजा आता है. और जब अब की बार मैं हैदराबाद गई ना, तो एक्चुअली मैंने पुरानी यादें जी. कैसे? क्योंकि बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में हम अक्सर वहां जाया करते थे. मेरी दो दो खालाएं वहां पे रहा करती थी. फिर हम सब बड़े हुए, बिजी हुए, कजन्स ने शहर बदल लिए, हम अपनी लाइफ में बिजी हो गए, हैदराबाद जाना ही नहीं हुआ. और अब जब इतने सालों बाद मैं वहां गई ना, तो मैंने एक चीज डिसाइड करी कि मैं ना कुछ नया नहीं एक्सप्लोर करूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा. आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर द ओल्ड मेमोरीज जो हम तब किया करते थे जब हम बच्चे थे. तो मैंने उन्हीं जगहों पर चाट खाई, उन्हीं जगहों पर आइसक्रीम खाई जहां से हम बचपन में खाया करते थे. हालांकि अब वो क्वालिटी मेंटेन नहीं है, लेकिन यादें तो मेंटेन है यार. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोरीज, आई विजिटेड ऑल दोज एरियाज, ऑल दोज प्लेसेस. उन्हीं गली कूचों में मैं घूमी जहां पर बचपन में हम घूमा करते थे. हालांकि आज उन जगहों पर मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, एक काम जरूर था, मेरी यादों को टटोलना, जो मैंने किया. और बड़ा सुकून मिला यार मुझे ये सब करके. क्या है कि पुरानी यादों के अंदर ये जो कंफर्ट होता है ना, इट्स मोर लाइक अ कुशन देन एनीथिंग एल्स. एंड आपको पता होता है कि ये कंफर्ट का श्योर शॉट फॉर्मूला है कि अगर इस कुशन पे गिरे ना, तो चोट नहीं लगेगी. इस कुशन पे गिरे कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा, वो डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी जी चुके हैं. एंड नॉस्टैल्जिया डेफिनेटली फील्स लाइक होम. तो चलो फिर मिड्डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालूं, वही पुरानी यादों को ताजा करते हैं और चलते हैं अपने कंफर्ट जोन में. और इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. Na vidva burka.
1: Milci, burka.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे। वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: अपने सिर पे करवा ले।
3: शिवानी,
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
7: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
8: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
7: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
9: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: ये गाना इस गाने पे तो झूमता है आज भी सारा जमाना. एंड द गाना इज मेरा पिया घर आया ओ राम जी.
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. याराना मूवी का ये गाना has been a super duper hit since years. गया ही नहीं हमारी प्लेलिस्ट में से. आज भी ये गाना चल जाता है ना तो सब नाचने लग जाते हैं like crazy. But यार ये गाना जो था which was sung by कविता कृष्णमूर्ति, इस गाने को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी मिला था. एंड इनफैक्ट इस गाने में जो कोरियोग्राफी थी सरोज खान जी की, दैट वॉज ऑल्सो अमेजिंग. ऊपर से माधुरी दीक्षित का डांस, तो चार चांद तो लगने ही थे इस गाने को. वेल, ये जो मूवी थी याराना, इसके बारे में एक बात है जो मुझे आज जाके पता लगी है, which is कि दिस फिल्म की स्टोरी वाज इंस्पायर्ड एंड अडैप्टेड फ्रॉम अ हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी विच वाज स्लीपिंग विद द एनिमी, जिसके अंदर जूलिया रॉबर्ट्स थी. अब तो ये मूवी देखनी पड़ेगी 100%. एंड ऑल्सो इस फिल्म के अंदर 1977 की एक बॉलीवुड क्लासिक फिल्म हुआ करती थी, दुल्हन वही जो पिया मन भाए. इस फिल्म से भी कुछ इधर उधर छोटी मोटी इंस्पिरेशन ली है, और जिन्होंने 1977 की वो फिल्म देखी उनको समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या चीजें इधर आई है याराना में वहां से उठकर. मजे की बात तो ये है कि इनिशियली जब इस फिल्म की कास्ट डिसाइड हुई थी तो गोविंदा को अप्रोच किया गया था फॉर द मेन लीड, ऑफ कोर्स ऑपोजिट माधुरी दीक्षित. लेकिन फिर स्केड्यूलिंग के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ी. उसके बाद जैकी श्रॉफ का नंबर लगा, लेकिन फिर अगेन उनकी डेट्स का भी इशू होने लग गया. एंड फाइनली ऋषि कपूर स्टेप्ड इनटू द रोल. इनफैक्ट जो रोल राज बब्बर ने प्ले किया है उसे कमाल हसन को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को डिक्लाइन कर दिया बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू पोर्ट्रे अ नेगेटिव कैरेक्टर. लेकिन एक बात ऐसी है जो शायद आपको नहीं पता होगी कि याराना मूवी के बिहाइंड द सीन्स में वरुण धवन भी है. बताऊंगी आपको थोड़ी देर में. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: earned the trust of more than 5,000 residents in last November's election. Sujit believes every community deserves a voice in Washington. Please vote for Sujit Singh in this Democratic primary. Return your mail-in ballot if received. Early voting, May 26th through May 31st. Election day, June 2nd. Learn more at singforcongress.org. Paid for by Sujit Singh for Congress.
1: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
0: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
1: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
0: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
4: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
0: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: It's 11:30 AM. Mirchi Time Check.
1: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: याराना मूवी की शूट के दौरान देयर वाज दिस वन सीन जो कि ट्रेन में शूट होना था पब्लिक के बीच में, और पब्लिक की अटेंशन अवॉइड करने के लिए ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित ने क्या किया पता है आपको?
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित पब्लिक के बीच में पहुंचे भेष बदलकर। दैट वाज दे वर वेयरिंग बुरकास। हैदराबाद में ये शूट हो रहा था एंड ट्रेन के अंदर ये लोग बैठे हुए थे, और इन लोगों ने जब ये शूट किया तब इन लोगों ने बुर्का उतार दिया होगा ऑफकोर्स, लेकिन पब्लिक को अवॉइड करने के लिए बुर्का पहने हुए थे ये लोग। हुआ ये कि जब तक इनकी ट्रेन पुणे स्टेशन पहुंची तब तक ऋषि कपूर का बुर्का उतर चुका था, जिसकी वजह से कुछ बहुत ही मजाकिया किस्से वहां पर हुए जो की पूरी टीम ने एंजॉय किया। हे, एंड बाय द वे, देयर वाज आल्सो दिस वरुण धवन नाम का एक छोटा सा लड़का जो कि अपने पापा इस फिल्म के डायरेक्टर डेविड धवन के साथ साथ जगह जगह फिर रहे थे, एंड ही वाज प्रेजेंट बिहाइंड द सीन्स ऑफ दिस फिल्म। इनफैक्ट जब इस फिल्म की शूट स्विट्जरलैंड में हो रही थी, एट दैट टाइम वरुण धवन ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि ये लोग बस में आया जाया किया करते थे, एंड वरुण धवन सबको एंटरटेन किया करते थे, एंड यूज्ड टू डांस अ लॉट विद माधुरी दीक्षित। और जब वो बड़े हो गए और माधुरी दीक्षित से मिले तो माधुरी ने उनको याद दिलाया कि कैसे वो डांस किया करते थे, और उस तरीके का डांस माधुरी ने कहा कि उन्होंने उनका ऑन स्क्रीन भी नहीं देखा है जिस तरीके का उन्होंने उस जमाने में बस में किया था। अगर मैं वरुण धवन की जगह होती ना तो शायद मैं ये बोल चुकी होती कि बचपन में किस्मत का खेल नहीं पता था ना, तो बचपन में जो डांस किया वो बहुत ही दिल से किया। बड़े होते होते हमारा जो डांसिंग टैलेंट है वो कहीं और निकलने लग गया, बिकॉज ऑफ द रीजन कि बड़े होने के बाद हम किसी के गाने पर नहीं किस्मत के इशारों पर नाचने लग जाते हैं, और बेस्ट डांस वही निकल के आता है। बॉस, यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको पता है सोनू सूद जो है, he has been saving lives since 1997.
2: नब्बे की गप्पे.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और अब आप सोचोगे कि हाँ क्या बात कर रही हो यार सारा, सोनू सूद का दिल इतना बड़ा है कि ये इंडस्ट्री में आने से पहले से ही सारे काम कर रहे थे. तो वेल एक्चुअली वो जो जिंदगियां बचाने का काम कर रहे थे ना, वो नागराज बनकर कर रहे थे. हाँ, आपको याद भी नहीं होगा क्योंकि मुझे भी नहीं था और हमने ये रियलाइज भी नहीं किया कि नागराज कॉमिक का एक टेलीविजन एड आया करता था और उस टेलीविजन एड में हरे कपड़े पहने हुए जो नागराज बंधु थे ना, दैट वाज सोनू सूद. रिवाइज करने के लिए आपको एक बार एड सुनाती हूँ, क्या पता आपको याद आ जाए.
3: नागराज जुर्म का दुश्मन, जिसके आगे है बेअसर आग का तूफान, आंखों में सम्मोहन, हाथों से निकले जहरीले नार.
1: अभी कुछ याद आया? वेल, इस एड में वो जो हीरो हुआ करते थे वो अपने सोनू सूद ही हुआ करते थे यार. अगर आपको ये बात अच्छे से देखनी है और फिर बोलना है कि अरे हाँ यार, तो YouTube पे जाके चेक करना, आपको मिल जाएगा ये एड. अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La
1: virpa la burga. Mirchi, burga. Hello.
2: Hello, usko vahan se mat uthao, yaar. Hello.
1: Hello.
2: Hello. Aap hold karna, ek second, bhai sahab. Isko vahan se mat uthao, yaar. Aise nahi uthega, yaar. Toot jayega, saara saman toot jayega vahan se. Mat karo usko vahan se. Hello. हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन?
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
1: कहाँ भिजवाना?
2: मैं आपको बता दूं। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
1: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा,
1: क्या कर रहा
2: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Anguthi Wali Jelly.
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सोचते हैं कि खुद को डायमंड वाली अंगूठी दिलाएं, लेकिन इस दौर में भी तुम याद आई जाती हो यार। तुम्हें याद करके ना बचपन की मीठी यादें ताजा हो जाती हैं। वो छोटी रंग बिरंगी नरम नरम और मीठी जली जिसे उंगलियों में पहनकर राजा महाराजा जैसा महसूस करते थे यार। मैं अक्सर ना तुम्हें ट्यूशन पहनकर चली जाती थी, होमवर्क करते करते चुप चुप के तुम्हारे चटकारे लिए जाते थे, और तुम्हारी बेस्ट बात भी यही थी कि तुम्हें खाते खाते हाथ गंदे और चिप चिप नहीं होते थे। टॉफी और चॉकलेट के बीच तुमने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। जेब में चिल्लर हो या ना हो, लेकिन तुम्हें खरीदने की जिद कभी कम नहीं हुई। दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हें उंगलियों में पहनना और फिर धीरे धीरे तुम्हें चाट चाट कर खाना, क्या मजा आता था यार। आज के फैंसी चॉकलेट्स और स्नैक्स के बीच में तुम कहीं खो तो गई हो, लेकिन तुम्हारी यादें अब भी हमारे साथ हैं। काश फिर से वो बचपन लौट आए और हम तुम्हें वैसे ही उंगलियों में पहनकर खिलखिलाते हुए तुम्हारे चटकारे ले सके। तो सच बता रही हूँ, आज ये जो हम सोने चांदी की अंगूठियां पहनते हैं ना, उन्हें भी एक पल साइड में रखने के लिए तैयार हो जाऊंगी मैं। थैंक यू हमारे बचपन को इतना मीठा और इतना रंगीला बनाने के लिए। तुम्हें याद करती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: रॉबर्ट उलमान की आवाज में ब्लफ मास्टर मूवी से ये गाना इस कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: वेल, ये वो गाना है जो जब रिलीज हुआ तो गाने में बड़ी दिक्कत आई भाई, तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन गाना गाने में मजा भी उतना ही आता था यार, क्योंकि इसका म्यूजिक इतना जबरदस्त लगता है ना कि कोई इसे गुनगुनाए बिना रह नहीं सकता था। एंड द ट्रैक इज बुरे बुरे हम शैतान जरा जरा बचना रे हमसे। ये इस ट्रैक की खास बात थी कि इस ट्रैक में लिरिक्स हमें सिवाय इन लिरिक्स के और कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी हमने बाकी सब कुछ ना रट्टाफाई कर लिया था। वेल बेसिकली इस गाने की काफी लंबी चौड़ी लिरिक्स जो है वो इंडियन है ही नहीं, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, बल्कि पर्शियन लैंग्वेज में है, एंड दैट इज द रीजन कि हमें कभी वो समझ में ही नहीं आया। लेकिन फाइनली मैंने आपके लिए इन लिरिक्स का मतलब जो है वो निकाला है। एंड इस गाने के अंदर बेसिकली बात की जा रही है कि बंदा जो है वो बंदी को बता रहा है कि देयर वाज अ टाइम एंड आई लव्ड यू, और मैं ना तुम्हारे साथ बड़ा खुश हुआ करता था, लेकिन फिर तुम जो है ना नॉटी हो गई, बदमाश हो गई, और तब से मैंने डिसाइड किया है कि तुम मेरे करीब नहीं आओगी अब। और ये जो बात कही गई है ना कि बोरो बोरो दिलम तोरा तोरा ना मिखाद, इसका मतलब ये है कि जाओ जाओ यार, मेरे दिल को तुम्हारी अब जरूरत नहीं है, एंड नाउ आई डोंट वांट टू सी यू एनीमोर। माय गॉड, ये हंसी मजाक में कितनी गहरी बात कह गया गाना यार। मैं तो आज तक इस गाने को ऐसे ही लिया करती थी कि कोई फनी बात कह रहे हैं यार, कुछ नॉटी नॉटी बात बंदा जो है अपने बारे में कह रहा है, लेकिन यहाँ तो बेचारे बंदे का दिल ऐसा टूटा हुआ है कि वो बंदी से ये सारी सीरियस बातें कर रहा है यार। उफ, ये प्यार भी ना, एक बार इसके चक्कर में पड़ जाओ और दिल तुड़वा लो ना, तो आपके इमोशंस कहना कुछ चाहते हैं लेकिन इन इमोशंस की धुनें जो हैं ये कुछ और ही निकल के आती हैं। यानी कि लिरिक्स तो सीरियस हैं लेकिन इमोशंस की धुनें इतनी फन होंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिल टूटने वाले गाने के ऊपर पब्स में लोग नाच भी लेंगे। आज जब इस गाने के मतलब पता लगा है ना मुझे, तो मुझे रियलाइज हुआ है कि हाय, ये तो नाचने वाला गाना है ही नहीं यार। बट स्टिल, इस गाने के म्यूजिक को 10/10 देते हुए अब ये गाना मैं आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ, और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी मैं आपको यहाँ के अलावा तो मिल ही जाऊंगी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause इट्स हॉट।

हर कलाकार के दो चेहरे होते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक चेहरा प्रोफेशनल लाइफ का, एक चेहरा पर्सनल लाइफ का, जिसे वो अक्सर छुपा छुपा के रखते हैं या उतना ही दिखाते हैं जिससे उनके प्रोफेशनल लाइफ के चेहरे पे कोई असर ना पड़े। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो इस मामले में बिंदास निष्कपट होते हैं। वो जैसे पर्सनल लाइफ में होते हैं वैसे ही खुद को बताते हैं, और ऐसे ही कलाकार थे वो जिन्हें हिंदी सिनेमा का फर्स्ट शोमैन कहा जाता है, राज कपूर साहब, जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं और बात कर रहे हैं अबाउट द अदर साइड ऑफ हिम। उनमें वो सारे फ्लॉज थे जो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से गलत माने जाते हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना। वो लेडीज से फ्लर्ट करते थे, कई बार फ्लर्ट करते करते लिमिट भी क्रॉस कर जाते थे। शादीशुदा होने के बावजूद उनकी लीडिंग लेडीज के साथ उनके लिंकअप्स की, रिलेशनशिप्स के बारे में हम सबने पढ़ा सुना है, और उन्होंने इन सब बातों को कभी छुपाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अपनी लाइफ में उन्होंने जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत की वो था उनका क्राफ्ट, सिनेमा, जिसने उनकी आवारगी को एक सलीका दिया। वो शायर निदा फाजली की कुछ लाइन्स हैं कि बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, बहुत मुश्किल है बंजारा मिजाजी, सलीका चाहिए आवारगी में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिस्टर गौतम,
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन का है सर, नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर कुछ गाके सुनाई?
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है एनाकोंडा आपने? एनाकोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ।
4: वही सर एनाकोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
3: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं?
4: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया एनाकोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
3: सुन ले बात,
4: मेरी बात
3: हाँ। सुन पहले बात सुन।
4: हाँ सर,
3: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
4: है। सर बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
4: जी सर।
3: और जिसने भी ये नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Covid che saat, only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, again.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
6: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
7: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
8: अरे मुझे कोई ट्रैक करे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
12: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
11: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
11: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
15: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi.

0: आपको पता है डायरेक्टर अनीस बज़मी ने राज कपूर के साथ काम किया हुआ है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1982 की फिल्म प्रेम रोग में सेवेंथ असिस्टेंट डायरेक्टर थे अनीस बज़मी। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था कि फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर राज कपूर का कितना खौफ रहता था सेट्स पे।
1: बहुत ही टेरर था उनका, कब क्या होगा वही नहीं पता होता था। एंड थोड़े शॉर्ट टेम्पर भी थे, जब एडिटिंग करते थे तो वो शराब छोड़ देते थे एंड सिगरेट छोड़ देते थे। जब तक फिल्म एडिट होगी, चाहे वो एक महीना हो, दो महीना हो, दस महीना, और दोनों चीजों से बहुत प्यार था उनको, तो वो एक इरिटेशन लेवल भी जो है ना वो उस कदर होता था कि आप मतलब बस नाखून जितनी खाली गलती की थी और उसके बाद फिर आप अपनी दशा देखिए क्या होगी।
0: पर एक चीज जरूर होती थी, फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट्स पे जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा डांट डपट मारपीट हो, बाद में मजा भी उतना ही होता था बिकॉज पार्टीज इतनी सारी होती थी कर्टसी राज कपूर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rg.charu, rg.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

ये जो इंडिया का रशिया के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, इसका कुछ कंट्रीब्यूशन तो राज कपूर साहब को भी जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो सीन कुछ यूं था कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे रशिया और इंडिया के बीच अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो रहे थे, बहुत सारा कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, जिसकी वजह से इंडियन फिल्में रशिया में रिलीज हुई। एंड समहाउ राज कपूर के किरदार जो उन्होंने अपनी फिल्मों में प्ले किए थे, उन किरदारों की इनोसेंस, सिंप्लिसिटी, उनकी स्ट्रगल्स और एस्पिरेशन से रशियन लोगों ने इतना कनेक्ट किया कि उनको एक अलग तरह की उम्मीद और खुशी मिली उन फिल्मों से, उन किरदारों से। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राज कपूर बिकेम दिस सेंसेशन, दिस आइकॉन इन रशिया। मतलब राज कपूर को बिना वीजा रशिया में एंटर करना अलाउड था। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ये मेंशन किया है कि राज कपूर जब मॉस्को में एक टैक्सी में बैठे तो वो टैक्सी सड़क पे नहीं हवा में चल रही, क्योंकि लोगों ने खुशी में उस टैक्सी को उठा लिया था। राज कपूर के गाने बिकेम एंथम्स इन रशिया, जो आज भी वहाँ प्ले होते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Purani Jeans with Charu only on

0: रणधीर कपूर को डायरेक्शन सीखने के लिए राज कपूर साहब ने डायरेक्टर लेक टंडन के पास भेजा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो रणधीर कपूर जब ये डायरेक्शन सीखने के लिए घर से निकलने लगे तो राज कपूर साहब ने उनको क्या कहा? रणधीर कपूर ने एक बार एक कॉमेडी टीवी शो पे शेयर किया था, सुनिए।
1: राज कपूर जी ने बोला गाड़ी की चाबी यहाँ छोड़ जाना, ये वैल्यू सिस्टम है। राज कपूर जी ने हमको सिखाया कि पैसों की कदर होनी चाहिए। वी वर ब्रॉट अप दैट वे। बस में गए, ट्रेन में गए, पर जब मैं एक्टर बन गया और पैसे थोड़े बहुत कमाने लगे, मैं एक छोटी सी गाड़ी में जाता था। कोई भिखमंगा आया तो हंसने लगा कि साला तुम ऐसी गाड़ी में जाता है, पिक्चर में तो साला बड़ी लंबी गाड़ी होती है। घर गया तो बबीता को बोला कि तेरे पास कितने पैसे जोड़े हुए हैं। तो बबीता से थोड़े थोड़े पैसे मांगे, कुछ एडवांस मांगा प्रोड्यूसरों से, और फिर मैंने एक लेटेस्ट गाड़ी और लेके मेरे पिताजी के पास गया। बहुत खुश हुए, बेटा मैं बहुत खुश हूँ, आशीर्वाद दिया और कमाओ और गाड़ियां लो। बोलो पापा आप भी एक ऐसी गाड़ी ले लीजिए, हम राज कपूर है, एक तोपचीन गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। बोले बेटे मैं अगर बस में भी जाऊंगा तो बोलेगा राज कपूर बस में बैठा हुआ है, ये तुम्हें जरूरत है।
0: क्या ही मजा मस्ती ड्रामा चलता होगा कपूर हाउस होल्ड में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या
0: रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: लागा गोरी गुजरिया से,

0: डीडीएलजे फिल्म में शाहरुख खान का किरदार राज जो तुनतुना बजाता है, अब तो हम सब जानते हैं कि उसको मैंडोलिन बोलते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और जब ये फिल्म शूट हो रही थी ना, तो शाहरुख खान ने इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक सवाल पूछा था। क्या पूछा था, एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था, सुनिए।
1: मैंने पूछा था कि यार आदि, why did you decide on a mandolin? उन्होंने मुझे बताया कि मैंडोलिन उनका सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है। उसका एक बड़ा ही कमाल का रीजन है कि why he liked a mandolin. आदि has always been a Mr. Raj Kapoor fan. उन्हें बड़े अच्छे लगते थे। उन्होंने मुझे बताया most of the music or lot of the music that is used in Mr. Raj Kapoor's films was from the mandolin.
0: Well, इस फिल्म में शाहरुख खान का नाम राज कपूर के नाम पर ही था। एंड राज कपूर खुद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे, अकॉर्डियन, बैकपाइपर, पियानो, हारमोनियम, तबला एंड मैंडोलिन भी। और उनकी फिल्मों के गानों में जो मेरा फेवरेट है जिसमें मैंडोलिन यूज हुआ है ना, वो ये वाला है जो अब हम सुनेंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्च।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाला उसका बाला सबका बाला मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो, उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
3: हेलो
4: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
3: हाँ जी बोलो।
4: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
3: हाँ जी देते।
4: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, हाथ उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
3: कहाँ भिजवाना है?
4: तो मैं आपको बता दूँ। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
3: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
4: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
3: किसको जी?
4: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
3: क्या गिर गया?
4: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
3: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
4: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
3: हाँ
4: सामान उठवा,
3: क्या कर रहा
4: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
3: उठवाना है।
4: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
5: हेलो
3: हेलो
5: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
3: कहाँ से बोल रहे हैं?
5: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Oh no!
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab, mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.
0: Pirani Jeans with Charu, only on

0: राज कपूर का असली नाम या पूरा नाम रणबीर राज कपूर था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो राज उनका मिडिल नेम था और उनके असली नाम पे ही रणबीर कपूर का नाम है। और एक बार एक बहुत पुराने इंटरव्यू में रणबीर ने ना राज कपूर साहब के साथ जुड़ी अपनी एक बचपन की बहुत ही प्यारी याद शेयर की थी, सुनिए।
1: मिस्टर राज कपूर पास्ड अवे व्हेन आई वाज रियली यंग, आई वाज अराउंड 6 इयर्स ओल्ड। वेल आई रिमेंबर दैट व्हेन वी वर रियली यंग, ऑल ऑफ अस, माय सिस्टर मी, करीना, लोलो, माय अदर कजिन्स फ्रॉम दिल्ली, ही यूज्ड टू कॉल अस टू द रूम, यू नो, एंड ही हैड ऑल दीस टॉफीज, यू नो, व्हिच ही यूज्ड टू बाय व्हेन ही यूज्ड टू ट्रैवल, एंड ही यूज्ड टू हाइड इट इन हिज रूम। सो ही यूज्ड टू लाइक टेक ऑल सलाम्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस, मेक अस डू सलाम, give him a kiss, do a little dance for him, and then he used to give us one toffee. And that getting that toffee was a very big deal. You know, I still remember that taste.
0: आपको पता है, जब जब रणबीर से राज कपूर के ऊपर बायोपिक बनने की बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि जब तक किसी बायोपिक को आप ईमानदारी से न बना पाएं, तब तक नहीं बनाना चाहिए। और अगर ये बायोपिक ईमानदारी से बना दी गई, तो शायद कपूर खानदान ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। चलिए, बायोपिक न सही, लेकिन उनकी अमेजिंग फिल्में हैं जिसके अमेजिंग गाने हैं पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
12: It's 2:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels. Best quality, best price.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर की वो साइड जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और हम बात कर रहे हैं अबाउट द अदर साइड ऑफ राज कपूर। राज कपूर में वो सारे ऐप थे जो एक सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से गलत माने जाते हैं। वो शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, औरतों के साथ फ्लर्ट करते थे और कई बार लिमिट भी क्रॉस कर जाते थे। उनकी लीडिंग लेडीज के साथ उनके लिंकअप्स, उनके रिलेशनशिप्स की बहुत सारी स्टोरीज बहुत सारे इंटरव्यूज, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज में है। जैसे ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ये मेंशन किया है कि जब राज कपूर वैजयंती माला जी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थे तब उनकी मॉम यानी कि राज कपूर की वाइफ उन्हें यानी कि ऋषि कपूर को लेकर कहीं और रहने चली गई थी। इस रिलेशनशिप को वैजयंती माला ने कम्प्लीटली डिनाई किया और ये कहा कि ये संगम फिल्म को प्रमोट करने के लिए आरके फिल्म्स की पीआर टीम का स्टंट था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये जिन भी रिश्तों में राज कपूर इन्वॉल्व हुए ये नरगिस जी के साथ ब्रेकअप के बाद के रीबाउंड रिलेशनशिप्स थे। वो मुझे कुछ लाइंस याद आ रही हैं कि लिपटा है मेरे दिल से किसी राज की सूरत, वो शख्स के जिसको मेरा होना ही नहीं है। अजब रवायत है मोहब्बत की, उसे पाना भी नहीं है, उसे खोना भी नहीं है। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
5: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani jeans with Charu. Only on Mirchi. Purani
8: jeans. Mujhe kuch kehna hai.
9: Mujhe bhi kuch kehna hai.
8: Mujhe kuch kehna hai.

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: राम तेरी गंगा मैली फिल्म का म्यूजिक कैसे बना था?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और एक बार एक कॉमेडी टीवी शो पर राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर ने ये बात शेयर की थी, सुनिए।
2: एक बार मैं और पिताजी दिल्ली गए थे किसी की शादी पे, वहाँ रविंदर जैन जी वो गाना गा रहे थे, एक राधा एक मीरा, सुना वाह वाह वाह वाह। बोले किस तस्वीर का ये गाना है? बोले ये मेरा प्राइवेट गाना है। बोले ये गाना मेरा हो गया। वो तो बड़े एक्साइटेड हो गए, राज कपूर बोल रही है मुझे दे दो। अगले दिन ऐसा करो डब्बू, घर में बोल देना कि शाम को 5-7 लोग खाना खाएंगे तुम्हारे साथ और मैं भी आ रहा हूँ, मुझे किसी को मिलना है और वो इस शहर में मिल सकते हैं। बोले ठीक है। मयूरी क्या हो रहा है अपने घर में? एक तबला आया है, सितार आई है, सारंगी आई है, पापा आ रहे हैं ना, आने दो, वो आए साथ में रविंद्र जैन भी आ रहे थे।
3: मुझे ये दिन याद है।
2: तो मैंने नमरा चादर लगाओ, इधर तकिए वकिए लगाओ एंड सब बैठे, दादू मेरा गाना बच्चों को सुना दो। तो वो गाना फिर से शुरू हो गया। तो गाना उनने फिर गाया, एक राधा एक मीरा। तो मुझसे बोले तेरे पास चेकबुक है, जो 25,000 का चेक बना के ले आ रविंद्र जैन के।
1: एंड दैट इज हाउ रविंद्र जैन को साइन किया गया था इस फिल्म के आइकॉनिक म्यूजिक के लिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

आपको पता है एक्टर नील नितिन मुकेश एक बार बचपन में राज कपूर की कोई फिल्म देख रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उसमें एक गाना आया तो नील की फैमिली ने उनको बताया कि ये गाना तुम्हारे दादू मुकेश गा रहे हैं, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं ये तो राज कपूर गा रहे हैं। हम सबको बचपन में ऐसा लगता था ना कि वो जो एक्टर्स गाना गा रहे हैं वो खुद गा रहे हैं, और कुछ आवाजें एक्टर्स पर ऐसे सूट होती थी जैसे उनके लिए ही बनी हो, मेड इन हेवन। जब मुकेश जी का निधन हुआ था 1976 में तो राज कपूर रो पड़े और बोले कि मैंने अपनी आवाज खो दी। 100 से भी ज्यादा गाने गाए थे मुकेश ने राज कपूर के लिए। पहला गाना जहां 1948 में आग फिल्म के लिए था, वहीं आखिरी गाना 1975 में धर्म करम मूवी के लिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu। अच्छा, ये सारे गाने जो मुकेश जी ने राज कपूर साहब के लिए गाए, उनमें से सबसे प्यारा पता है कौन सा है? अनाड़ी फिल्म का ये वाला। सुनिए मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो मिस्टर गौतम,
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर मैं एक्चुअली आसर है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
4: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ, सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: सर कुछ गा के सुनाइए।
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज।
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
3: एनाकोंडा में कौन से गाने
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ। ताने डोले मेरा माने डोले मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया।
3: मैं पागल है क्या?
4: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
3: सुन ले बात
4: सर,
3: और बंद करिए बिन बिन जो बजा रहा है ना ये बंद कर
4: सर। बोलिए
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर।
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या, किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: மிர்ச்சி முருகா நவீத் கே சாத் only on மிர்ச்சி it's hot
1: yep yeah,
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
8: अब मिर्ची खा।
10: Radio Mirchi, it's hot.
11: Purani Jeans with Charu only on

0: याद कर रहे हैं हम उनको और बात कर रहे हैं अबाउट दी अदर साइड ऑफ राज कपूर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। राज कपूर साहब को गुस्सा बहुत आता था, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फिल्म मेकर थे वो, खास करके जिन फिल्मों में उनके बच्चे काम कर रहे होते थे। एक बार एक इंटरव्यू में सुनिए ऋषि कपूर ने अपनी पहली फिल्म बॉबी के पहले सॉन्ग शूट के बारे में क्या शेयर किया था।
1: मेरी जिंदगी का पहला गाना था, मैं शायर तो नहीं है। So I was very excited. I got on the sets. I saw my father there and that little insecurity crept into me. Where is the dance director? My father has to call him Saab. I said, Saab, वो choreographer, dance director नहीं है। He said, choreographer, dance director की क्या जरूरत है? गाना कैसे गाऊंगा? कौन करेगा? खड़े रहो उधर। I said, मैं कैसे कर सकता हूँ? I've done it. So do it for the first time. करो। I was looking around. He said, अगर मैं तुम्हारे लिए कोई choreographer या dance director बुलाऊंगा, तुम नए हो, वो जो करेगा तुम उसकी नकल करोगे, और जो नकल होगी उस आदमी ने शशि कपूर, धर्मेंद्र, जॉय मुखर्जी सबको वही करवाया होगा, और जब तुम करोगे तो लोग बोलेंगे अरे ये तो शशि कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है। तो मेक योर ओन आइडेंटिटी इन योर लाइफ, गो स्टैंड देयर एंड सिंग द सॉन्ग योरसेल्फ, देन ओनली यू विल लर्न।
0: ओ भाई भाई भाई, सुन के ही मुझे तो गूज़बम्स आ गए, डर लग गया एकदम से। बट दैट इज हाउ ही वॉज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्च

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com। It's 3:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम. RK Jewels. Best quality, best price.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और हम बात कर रहे हैं द अदर साइड ऑफ राज कपूर साहब। और ये बात तो जग जाहिर है कि राज कपूर साहब और नरगिस जी बहुत लंबे टाइम तक एक रिलेशनशिप में थे। 21 साल की उम्र में राज कपूर नरगिस जी से तब मिले थे जब वो 16 साल की थी और उनकी इस मुलाकात को उन्होंने बॉबी फिल्म के सीन में रिक्रिएट किया था जब डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर की पहली मुलाकात होती है। उसी दौरान late 40s में दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया और यहीं से उनकी दोस्ती, उनके बीच अट्रैक्शन की शुरुआत हुई। राज कपूर शादीशुदा थे तो भी नरगिस जी उनसे शादी करना चाहती थी। वेल, हमारे देश में मैरिज एक्ट 1955 में आया, उससे पहले एक मर्द का एक से ज्यादा शादियां करना बहुत ही नॉर्मल माना जाता था। राज कपूर नरगिस जी से कहते रहे कि वो उनसे शादी करेंगे लेकिन इवेंचुअली उन्होंने मना कर दिया। और इस तरह से दिल टूटने के बाद नरगिस जी राज कपूर की जिंदगी से और आरके स्टूडियोज की फिल्मों से हमेशा के लिए चली गई। इसके 2 साल बाद जब उन्होंने सुनील दत्त से शादी की तो ये बात राज कपूर बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी नाजुक सी मेल ईगो काफी हर्ट हो गई। वो शराब के नशे में धुत रहते थे, बदहवासी में सिगरेट से अपना हाथ जला लेते थे, किसी के भी कंधे पे सर रखकर रोना शुरू कर देते थे। काफी इंटरव्यूज में उन्होंने नरगिस जी का नाम डायरेक्टली ना लेते हुए उन्हें काफी बुरा भला कहा। अक्सर वो प्यार बहुत टॉक्सिक हो जाता है जिसको मंजिल नहीं मिलती है। ऐसा ही था नरगिस जी और राज कपूर साहब का प्यार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
1: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
4: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
1: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
1: एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
10: FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: दोस्तों ट्यूसडे का काम होता है बस लाइफ को थोड़ा सेटल कर देना। मंडे ने जो झटका दिया, ट्यूसडे आके बोलता है कि ठीक है भाई अब सांस ले लो। शाम शाम का लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर आज का दिन ड्रामेटिक नहीं था तो ऑनेस्टली दैट इटसेल्फ इज अ विन, क्योंकि ट्यूसडे ना एक्साइटमेंट के लिए नहीं, बैलेंस के लिए होता है। थोड़ा काम, थोड़ा रूटीन, थोड़ा नॉर्मल सी। तो आप भी बताओ दोस्तों, आज का दिन हैवी था या मैनेजेबल? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI और आपकी ट्यूसडे की वाइब शेयर करो। और आपकी ट्यूसडे की वाइब को मैच करने वाला ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे

0: Hit Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Ya, bala. Burga, burga. La vida es bala, burga.
1: Mirchi, burga.
2: हेलो.
3: हाय शिवानी.
2: हाय.
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
2: समाचार.
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर.
3: मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है. अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड. चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. हाँ? अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार इसका. ये कब से रोके हुए? वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ.
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना आपने कुत्ते का इलाज.
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं नहीं,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ूबी शेरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Oh no!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन.
11: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
12: Tera kya hoga, Kalia?
13: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
12: Ab, mirchi kha.
14: Radio Mirchi, it's hot.

इंसानों के मूड स्विंग सुने थे, लेकिन न्यू जर्सी के वेदर का अपना ही अलग मूड स्विंग है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। क्योंकि यार एक दिन लगता है कि स्प्रिंग ऑफिशियली आ चुका है, तो नेक्स्ट दिन लगता है कि नहीं नहीं अभी पिक्चर बाकी है। क्योंकि कभी जैकेट निकाली जाती है, कभी जैकेट गाड़ी में ही छोड़ दी जाती है। सुबह वेदर बहुत ही मस्त होता है, तो शाम तक इतनी हवा बहती है, इतनी हवा बहती है कि लगता है कि यार ये मौसम को भी ना फुल मूड स्विंग हो रहा है। वैसे सच कहूँ तो न्यू जर्सी का वेदर ना कभी कभी उस दोस्त जैसा लगता है जो लास्ट मिनट में प्लान चेंज कर देता है। आप सोचोगे कि यार अभी अच्छा खासा वेदर चल रहा है, एक बहुत ही अमेजिंग सी चाय पी जाए, तब तक वेदर का मूड ही बदल जाता है। पर फन तो यह है दोस्तों कि अब इस अप एंड डाउन में स्प्रिंग की झलक तो थोड़ी बहुत दिख रही है। ट्रीज आर गेटिंग ग्रीनर, हवा थोड़ी फ्रेंडलियर हो रही है और दिल बोल रहा है कि हाँ यार आउटडोर सीजन तो आ चुका है। तो चलिए इसी के साथ वेदर जितना भी अनप्रिडिक्टेबल हो हम हमारे मूड को प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं और हमेशा ही शानदार बना सकते हैं विद दिस सॉन्ग्स ऑन रेडियो मिर्ची। तो दोस्तों बस उसी के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
8: Listener MI, back to back gana sunega.
9: Back to back gana sunega.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shardar. Let's do Nautanki. Have a funky time.
2: दोस्तों आज का ऑडियंस सिंपल नहीं है, ट्रेलर देखते ही रिव्यू रेडी होता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और इसीलिए आज बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है एक्सपेक्टेशन वर्सेस डिलीवरी। मतलब हमने देखा है बिग बजट होने से फिल्म हिट नहीं होने वाली या फिर छोटी फिल्म भी फ्लॉप नहीं होने वाली। ऑडियंस तो अब स्टोरी देखते हैं, ऑथेंटिसिटी फील करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं इज इट वर्थ माई टाइम टू गो टू द थिएटर और नॉट। और इसलिए चाहे कितनी भी बड़ी मूवी हो, कितने भी बड़े नाम हो, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, सिर्फ बड़ा मत बनाओ, दिल तक पहुंचाओ, यही ऑडियंस का कहना है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपको क्या लगता है बॉलीवुड को अब क्या इंप्रूव करना चाहिए, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, कास्टिंग या मार्केटिंग। टेल मी ऑन इंस्टेंट आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

अब इसे कहते हैं ना सही मायने में शुभारंभ। शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और क्या आपको याद है कि बचपन में मम्मी कोई भी नए काम के लिए जाना हो तो दही चीनी खाए बगैर जाने ही नहीं देती थी, और आइडियली बस शगुन के लिए एक चम्मच दही काफी होता था। लेकिन घर पे बना मलाईदार दही का स्वाद इतना खूब होता था कि हम बच्चे एक कटोरी दही खा जाते थे। और यही रिचुअल यहाँ US में भी जारी है। फर्क इतना है कि अब ये रिचुअल दीप फूड के फार्म फ्रेश दही के साथ होता है। दीप फूड्स दही ना सिर्फ हार्मोन फ्री है बल्कि असली होम स्टाइल दही का स्वाद देता है। तो अभी भी एक चम्मच दही के बदले एक कटोरी दही खाने की आदत बरकरार है। और अगर आप भी किसी भी नए काम की शुरुआत दही चीनी खाकर करते हैं तो ज़रूर ले आइए दीप फूड्स फार्म फ्रेश दही, क्योंकि अच्छी आदतें कभी बदलनी नहीं चाहिए। जैसे कि मिर्ची पे ये हॉट सा गाना सुनने की आदत। सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

की टाइम। एक महीना, सिर्फ एक महीना भी काफी है जिंदगी बदलने के लिए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए आज बात करते हैं नई बिगिनिंग्स की। कभी सोचा है कि एक छोटी सी ट्रेनिंग आपको एक बड़ा करियर दे सकती है? जी हाँ, फ्लेबोटॉमी टेक्नीशियंस, हाँ वही लोग जो हॉस्पिटल्स में हर दिन केयर का पहला कदम होते हैं। AIMS एजुकेशन में सिर्फ एक मंथ की ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आप भी बन जाते हो हेल्थ केयर फील्ड के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। ऑनलाइन और कैंपस दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल भी है और ड्यूएबल भी। तो अगर आप भी एक सेफ, केयरिंग और सिक्योर प्रोफेशन चाहते हो तो आज ही कॉल कीजिए AIMS एजुकेशन एट 9082220002 या फिर विजिट कीजिए AIMSeducation.edu और डिस्कवर कीजिए वो एक सिप ऑफ चेंज जो आपकी जिंदगी में केयर और ग्रोथ दोनों लाएगा। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. Na vid bala burka.
1: Mirchi, burka. Hallo.
2: Hallo, uska vaan se mat uthao, yaar. Hallo.
1: हेलो
2: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब इसको वहां से मत उठाओ यार ऐसे नहीं उठाएगा यार टूट जाएगा सारा सामान टूट जाएगा वहां से मत करो उसको वहां से हेलो हेलो भाई साहब
1: हाँ जी बोलो
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन
1: हाँ जी देते
2: एक सेकंड होल्ड करना उसको वहां से मत उठा यार मैं तेरे से बोल रहा हूँ दो टुकड़े हो जाएंगे सारे मत उठा नहीं उठेगा तेरे से ये सामान भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं जितना सामान उठवाना है मेरे को कुछ ये मशीनें बंद कर दे मशीनें बंद कर दे सारी मशीन बंद कर दे शायद सारी बंद कर दे ये गिर गया है और इसको उठाना है यार ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई
1: कहाँ भिजवाना है
2: तो मैं आपको
1: बता दो
2: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है कितना सामान उठाते
1: हैं जी उठवा लेंगे उतना ही हम
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को हाँ ये आप ये भेज दो इसको इसको उठवा दो यार ये तो गिरा पड़ा यार ये इसकी वजह से सारी परेशान है
1: किसको जी
2: सेंसेक्स गिर गया है इसको उठवा दो आप
1: क्या गिर गया
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो सेन नीचे रह जाए तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको
1: सामान
2: उठवा तो मार्केट गिर गया यार मार्केट गिर गया उसमें सारे सारे परेशान है यार आप उठवा नहीं सकते तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ सेंसेक्स गिर गया यार
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो सेंसेक्स उठवा दो यार कब से गिरा पड़ा है हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और फोन मत काटिएगा मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते मार्केट की बात कर रहा था क्रेन किराए पे देते हैं आपका मुर्गा बन गया आप रेडियो मिर्ची पे हैं हेलो
1: कहाँ से बोल रहे हैं
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Namaste, Islam and Sat Sri Akal, bhaiyo aur behno. I'm Sujit Singh running for Congress in NJ12, a historic opportunity to bring your voice to Washington. Visit singforcongress.org and get engaged.
8: June 2nd, 2026. Early voting dates, May 26th to May 31st. Sujit Singh is the change we need.
7: Paid for by Sujit Singh for Congress.
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: Kisi zamane mein, maa haathon se ghisti, pyaar se kootti, muskura kar peesti. अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी दीप खाओ तो जानो
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और एक रियल वर्ल्ड वाइब ये होता है कि कभी मार्केट तो अपबीट होता है या कभी थोड़ा कॉशियस। हेडलाइंस तो चेंज होती रहती है, पॉलिसीज शिफ्ट होती रहती है, और इकोनॉमिक्स का मूड कभी क्लियर स्काई, कभी क्लाउडी तो कभी स्नो। ऐसे मिक्स मार्केट में ना लोग भी पॉज ले लेते हैं, सोचते हैं कि क्या यही सही टाइम है घर खरीदने का, वेट करें या मूव करें। पर हर चेंजिंग इकोनॉमी के बीच अपॉर्चुनिटीज़ भी क्वाइटली शेप हो रही होती है। स्मार्ट डिसीजंस पैनिक से नहीं, क्लैरिटी से लिए जाते हैं, और इसी क्लैरिटी के बारे में आज बात करेंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: गुड इवनिंग मिचेल, लिसनर्स, योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। होप यू ऑल हैड अ गुड डे एट वर्क। Turned out to be a nice day, and the AI boom is carrying the US markets lately. Two of the most common mortgage terms are 30-year and 15-year fixed mortgages. Both lock in your rate for the entire loan term. A 30-year mortgage is popular because it has a relatively low monthly payment, but it comes with a higher interest rate than shorter terms, and because you accumulate interest for 3 decades. A 15-year mortgage can be a good choice because it has a lower rate than you will get with longer terms. So you'll pay less in interest over the period of years. So friends, any questions on home buying, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate is at 6.25%. 20-year fixed mortgage rate is at 6%. 15-year fixed mortgage rate is at 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. That is lionmtg.com. Friends, if you have problems getting a suitable and right mortgage, we at Lion Mortgage offer a variety of products that combine flexibility and competitive rates of interest. It's our way of helping you stay financially safe, smart, and secured. Lion Mortgage specializes in conventional loans, FHA loans. We offer great rates on jumbo loans. We also offer DSCR loans and bank statement loans. So once again, friends, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. And don't forget to ask us about our zero closing cost refinance option. So call Lion Mortgage today at 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरु देव।
5: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
6: Bombay Express and Vaishnav Caterers, the finest indoor and outdoor catering service in USA. Live cooking on premises for engagements, marriage, baby shower, birthday parties and adult daycare. We make fresh farsan and sweets in USA. Also providing daily tiffin services with delivery in New Jersey and New York. Call Bombay Express and Vaishnav Caterers today at 732-986-6241 or visit 2849 Woodbridge Avenue, Edison, New Jersey.
7: This is something

0: It's 5:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और कभी किसी को देखकर ना दिल अगर हल्के से मुस्कुरा जाए, वो भी बिना परमिशन के, तभी तो लगता है कि यार ये फीलिंग ही अजब सी है। आज की शाम थोड़ी ड्रीमी है, बिल्कुल केके की अजब सी जैसे। यार केके की आवाज़ में वो सॉफ्टनेस थी जो पहली नज़र के शौक को ना पोइट्री बना देती थी। और विशाल शेखर ने ओम शांति ओम के इस गाने को डिलीबरेट बहुत ही मिनिमल रखा था, मतलब नो हैवी बीट्स, नो ड्रामा, ताकि सिर्फ फीलिंग बोल सके। और मजे की बात यह है कि फराह खान ने भी इस गाने के विजुअल्स को स्लो मोशन में शूट किया था, ताकि ऑडियंस को भी वही टाइम रुक जाने वाली फीलिंग मिले जो ओम को शांति प्रिया को देख के मिली थी। तो दोस्तों आप भी बताना कि आपकी लाइफ का अजब सी मोमेंट कौन सा था, और इस एल्बम का वो कौन सा दूसरा गाना जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और फिलहाल बजाते है ओम शांति ओम के हिट एल्बम का वो हिट गाना जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती। वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, बात हो रही है एक ऐसे ही एल्बम की जिसका यार मतलब हर एक गाना इतना ज्यादा हिट था, चाहे वो गाना दर्द बयां करे या डिस्को। जी हाँ, मतलब दर्द हो या डिस्को हो, बॉलीवुड तो कहता है कि शर्ट उतारो और डांस करो, क्योंकि दर्द ए डिस्को ओम शांति ओम का सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक पॉप कल्चर मोमेंट था। सुखी जी ने जो ये बहुत ही पावरफुल वॉइस में गाना गाया था, और विशाल शेखर के पंपिंग बीट्स ने इसको ना जिम प्लेलिस्ट ही बना दिया था। वैसे मजे की बात तो यह है कि शाहरुख खान ने इस गाने के लिए 6 से 8 महीने हार्ड कोर ट्रेनिंग की थी, और शूटिंग के दिन सेट पर पूरी यूनिट शॉक्ड थी, क्योंकि फराह खान ने भी बोला था कि ये गाना ना मतलब शाहरुख के कॉन्फिडेंस का और सिक्स पैक एब्स का सेलिब्रेशन था। और ऑनेस्टली तब से डिस्को भी दर्द भूल जाता है, और शाहरुख को जब हम इस गाने में इमेजिन करते हैं तो वी कांट टेक आर आईज ऑफ। वैसे दोस्तों आप भी बताना कि इस एल्बम का कौन सा वो हिट गाना है जो आपको बहुत पसंद है। फिलहाल बजाते हैं डिस्को में दर्द, यानी दर्द दे डिस्को, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो शोर नहीं मचाते, बस चुपके से दिल छू जाते हैं। मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों का वो सॉफ्ट मैजिक है जिसे कंपोज किया था विशाल शेखर ने अपने एल्बम ओम शांति ओम में। और इस गाने को ना एक टाइमलेस लव लेटर की तरह कंपोज किया गया है, मतलब ना ज़्यादा ट्रेंडी साउंड्स, बस एक बहुत ही खूबसूरत सी मेलोडी। और मज़े की बात तो ये है कि सोनू निगम जी ने कहा था कि ये वो गाना होगा जो उनके करियर का ना वन ऑफ द मोस्ट जेंटल सॉन्ग्स कहा जाएगा, और शायद इसीलिए इस गाने को सुनते ही ना शाम थोड़ी और रोमांटिक हो जाती है। तो दोस्तों आप भी बताना कि आप ये गाना किसे डेडिकेट करना चाहोगे। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ऐसा कौन सा वो दूसरा एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको सुपर डुपर हिट लगता है, टेल मी ऑन इंस्टा। और फिलहाल बजाते हैं मैं अगर कहूँ सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में, और फ्रॉम द ब्यूटिफुल एल्बम ओम शांति ओम, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscaba la, buscaba la, sacaba la. ¡Rápala! Burga, burga. La vida para la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello,
4: Mr. Gotham. Sir, मैं actually आपसे request करना चाहता हूँ. मैं तो आप सुना है फिर वो singing winging सिखाते हैं सर. तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े different होते हैं.
3: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
4: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था तो स्नेक का ही घुस गया था. तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ. सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर कुछ गा के
4: हाँ वही सर. नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना? कोंडा आपने ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो.
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
3: कौन से गाने
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
3: सुन ले बात मेरी.
4: हाँ
3: सुन पहले बात.
4: हाँ सर.
3: और इसे बंद करिए. बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
4: है. सर बोलिए.
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
4: जी सर.
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या? किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका.

0: सेठ के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
6: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
7: Chamakte Sitare 2026.
6: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
8: Kisi zamane mein, maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskuraakar peesti. अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Listener MI, back to back gana sunega.
12: Back to back gana sunega.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

बॉलीवुड म्यूजिक का डिबेट कभी खत्म ही नहीं होता। ओल्ड इज गोल्ड या न्यू इज बोल्ड। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और पुराने गाने ना यार टाइम लेते थे दिल में बसने के लिए, लेकिन नए गाने इंस्टेंट वाइब देते हैं। पहले लिरिक्स डायरी जैसे लगते थे, लेकिन आज बीट्स प्लेलिस्ट फ्रेंडली हो गए। दोनों का ना अपना ही एक अलग चार्म है। एक मेमोरी बनाता है, लेकिन दूसरा मोमेंट बनाता है। और शायद इसी बैलेंस में बॉलीवुड म्यूजिक सरवाइव कर रहा है। वैसे आप भी बताओ दोस्तों, आपका मूड आज किस तरफ है, रेट्रो या रीसेंट? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। फिलहाल मेरा मूड क्या कहता है वो तो आप अभी सुनेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
6: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
7: Tera kya hoga kalya?
8: Sardar, maine aapka namak khaya sardar.
7: Ab mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.

0: इट 6:30 PM मिर्ची टाइम चेक ब्रॉट यू बाय आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: शाम शानदार लेट्स डू नॉटंकी हैव अ फंकी टाइम।
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर किसी म्यूजिक कंपोजर को एक चैलेंज दे कि यार एक ऐसा गाना बनाओ जिसमें पूरा बॉलीवुड एक ही फ्रेम में नजर आए, तो ऐसे जो म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और डिलीवर भी किया, वो थे हमारे ओम शांति ओम के म्यूजिक कंपोजर विशाल शेखर जी। हाँ, क्योंकि यार उन्होंने बनाया हुआ दीवानगी दीवानगी सिर्फ एक गाना ही नहीं था, एक बॉलीवुड रियूनियन था। शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सबकी आवाज एक ही सेलिब्रेशन में। और मजे की बात तो यह है कि यार 30 से ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स ने सिर्फ इस गाने के लिए अपने स्केड्यूल्स एडजस्ट किए थे, और शूट के टाइम भी यार किसी वेडिंग

अलग अलग म्यूजिक ट्यून्स थे जिससे यार समझ आ जाए कि कौन सा स्टार एंटर कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको भी ये गाना उतना ही मजेदार लगा है तो मुझे जरूर बताना कि यार इस गाने में आपका फेवरेट स्टार कौन है। टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और ये भी बताना कि वो कौन सा ऐसा हिट एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है, उसके बारे में हम बातें करेंगे और उसका हर एक गाना आपके लिए बजाएंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। तब तक के लिए ओम शांति ओम का दीवान की दीवांगी राइट हियर ऑन मिर्ची। It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शमशांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बॉलीवुड को अगर एक टाइम मशीन में बंद करो ना, तो यार धूम ताना एक ऐसा गाना होगा फ्रॉम ओम शांति ओम का हिट एल्बम, जो उसका गोल्डन बटन होगा। जी हाँ, मतलब धूम ताना एक प्योर रेट्रो सेलिब्रेशन था। श्रेया घोषाल और अभिजीत की आवाज ने 70s के फिल्मी रोमांस को बिल्कुल फ्रेश स्पार्कल दिया था। और कंपोजर्स विशाल शेखर ने इस गाने को ना इंटेंशनली ओल्ड स्कूल ऑर्केस्ट्रेशन के साथ कंपोज किया था, मतलब वॉयलेंस यूज करके, ट्रम्पेट्स, ड्रामेटिक बिल्डअप्स, और जैसे राजेश खन्ना और जितेंद्र का दौर का जो चार्म था वो वापस आ गया हो। और मजे की बात तो ये है कि यार शाहरुख खान को और दीपिका पादुकोण को डिजिटली क्लासिक फुटेज के साथ मर्ज किया गया था, जिसमें ना उन्हें लेजेंडरी स्टार्स के एरा में सीमलेसली फिट कर दिया गया था, जैसे कि राजेश खन्ना या जितेंद्र। और फराह खान ने पर्सनली हर फ्रेम सुपरवाइज की थी ताकि नॉस्टैल्जिया ऑथेंटिक लगे। वैसे तो यार ये गाना टेक्निकली ब्रिलियंस था ही, बट उसी के साथ साथ काफी रिकग्नाइज्ड भी था, क्योंकि इस गाने को बेस्ट आर्ट डायरेक्शन और टेक्निकल कैटेगरीज में काफी सारे अवार्ड्स मिले थे, स्पेशली टू रिक्रिएट इट्स रेट्रो स्टाइल। तो दोस्तों धूम ताना खुद एक कल्ट फेवरेट बन ही गया था फॉर इट्स इनोवेशन विजुअल ट्रिब्यूट, और इससे पहले कभी कोई एडिटिंग या कभी कोई गाना इस तरह से नहीं देखा गया था। और ये गाना उतना ब्यूटिफुल और 70s एंड 80s के फिल्मी रोमांस को भी वापस लेके आया, नॉट जस्ट साउंड वाइज बट फील वाइज एंड लुक वाइज। तो आप भी बताना कौन सा ऐसा दूसरा रेट्रो गाना है जो आपको बहुत पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये हिट एल्बम ओम शांति ओम का ये हिट गाना धूम ताना बजाते हैं आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बताना कि कौन सा वो ऐसा दूसरा हिट गाना है या हिट एल्बम है जो आपको भी बहुत पसंद है, उसके सारे गाने बजाएंगे यहाँ पर और कहाँ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम 3 का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La fiesta la burga.
1: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हाय शिवानी.
2: हाय
3: शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर.
3: मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड. चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3. अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना. आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा. शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज, फोन मत काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
7: Chamakte Sitare 2026.
6: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
10: नमस्ते, इस्लाम एंड सत श्रीकाल भाई और बहनों. आई एम सुजीत सिंह, रनिंग फॉर कांग्रेस इन NJ12. ए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग योर वॉइस टू वाशिंगटन. विजिट singforcongress.org एंड गेट एंगेज्ड.
11: June 2nd, 2026. अर्ली वोटिंग डेट्स मई 26 टू मई 31st. Sujit Singh is the change we need.
10: Read for by Sujit Singh for Congress.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
15: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है.
14: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

किंग खान का बुलेट सीन लेकिन एक पिलो के भरोसे। शमशान द लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जुगाड़ कौन नहीं करता है यार, हम सब एवरीडे की लाइफ में जुगाड़ तो करते ही। और कुछ ऐसा ही जुगाड़ फराह खान ने भी किया था फॉर द मूवी मैं हूं ना। जी हाँ, वो सीन तो याद होगा आपको जब मैं हूं ना में शाहरुख खान ने अपनी चेस्ट पे बुलेट ली थी टू सेव ऑल द कॉलेज पीपल। लेकिन फन फैक्ट ये है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट था ही नहीं, उसके अंदर था एक पिलो, क्योंकि तब ना एक्चुअल प्रोटेक्शन सूट मिला ही नहीं था उन लोग को। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार कहाँ ढूंढते बैठे कि चलो जुगाड़ करते हैं, और उन्होंने पिलो यूज़ कर ली। लेकिन बाद में फराह खान ने बताया कि यार वो शॉट इतना परफेक्ट गया कि किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि शाहरुख खान के अंदर एक कुशन था। वेल, मुझे तो लगता है इसी को कहते हैं डेडिकेशन प्लस जुगाड़, यानी बॉलीवुड का असली फॉर्मूला। तो यार आपको वो शाहरुख खान का स्टंट पसंद आया था? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए मैं हूं ना का ये अगला गाना राइट on Mirchi, it's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स.
2: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स. ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस. फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu.
4: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज, हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
1: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: Listener MA, back to back gana sunega.
7: Back to back gana sunega.
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: It's 7:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
2: Bollywood music ka debate kabhi khatam hi nahi hota. ओल्ड इज गोल्ड या न्यू इज बोल्ड. शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि. और पुराने गाने ना यार टाइम लेते थे दिल में बसने के लिए, लेकिन नए गाने इंस्टेंट वाइब देते हैं. पहले लिरिक्स डायरी जैसे लगते थे, लेकिन आज बीट्स प्लेलिस्ट फ्रेंडली हो गए हैं. दोनों का ना अपना ही एक अलग चाव है. एक मेमोरी बनाता है, लेकिन दूसरा मोमेंट बनाता है. और शायद इसी बैलेंस में बॉलीवुड म्यूजिक सरवाइव कर रहा है. वैसे आप भी बताओ दोस्तों, आपका मूड आज किस तरफ है, रेट्रो या रीसेंट? डीएम मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI. फिलहाल मेरा मूड क्या कहता है वो तो आप अभी सुनेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
6: Chamakte Sitare 2026.
5: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
7: Tera kya hoga, Kalia?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab... मिर्ची का
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और देखते ही देखते ये शाम भी ढलने आ चुकी है और हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपके साथ शाम शानदार में अलग अलग धमाकेदार गाने बजाने का जो मज़ा है उसे मैं मिस नहीं करने वाली, इसलिए कल फिर से आपसे मिलने आऊँगी फ्रॉम 4 to 8 PM EST। और आज के लिए आप कहीं ना जाइए, क्योंकि यार प्यार के जो अनोखे फंडे हैं वो आपको समझाने आ रही है रोशी। तो कहीं ना जाइए, जमे रहिए, बने रहिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और आपकी जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड करते रहिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @RJMirchiSiddhi SIDDHI ओनली ऑन इंस्टा। और आपके लिए ये अगला तड़कता फड़कता गाना जाते जाते राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।